सोए जो अकेला जन्नतों में खेला, ऐसे ही किसी का वास्ता। पैदा हो गवाही तेरे घर से आए, ऐसे ही किसी का वास्ता।

0: 7:15 AM. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwaber Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सब जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशा।
0: गली मोहल्लों में सफाई का खास ख्याल रखें, कहीं पर पानी खड़ा ना होने दें। डेंगू जानलेवा मर्ज है, इलाज से बेहतर एहतियात है। This public service message is brought to you by FM 100.
2: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदान जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी साख तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: facebook.com/fm247365 FM 247365

0: अगली गाड़ी से रास्ता लेने के लिए दिन में हॉर्न और रात में बत्तियों का इस्तेमाल कीजिए और रास्ता मिलने का इंतजार कीजिए।
1: दिस मैसेज वॉज ब्रॉट टू यू बाई FM 100 पाकिस्तान।
2: facebook.com/FM247365 FM 247365

0: पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है।
1: बैंकिंग सहूलियात जैसा कि माइक्रो फाइनेंस एप्स, जैज कैश, इजी पैसा और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अमूमन सारिफ के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के साथ मुंसलिक होते हैं, जिसके जरिए ये अकाउंट्स न सिर्फ फाल किए जाते हैं बल्कि किसी तब्दीली की सूरत में तस्दीक के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर कोई सिम आपके नाम से हटा दी जाए या तवील अरसे तक इस्तेमाल न होने की वजह से रिसाइकल होकर दोबारा जारी कर दी जाए तो यही नंबर किसी दूसरे शख्स को दिया जा सकता है, और अगर बर वक्त एहतियाती तदाबीर इख्तियार न की जाए तो नया सारिफ इस नंबर से मुंसलिक आपके सोशल मीडिया या दिगर डिजिटल अकाउंट्स तक रसाई कर सकता है। ऐसे अकाउंट से की जाने वाली किसी भी गैर कानूनी, गुंडाकोनी या तौहीन आमेज सरगर्मी की जिम्मेदारी असल अकाउंट होल्डर पर आयद हो सकती है, जिसके नतीजे में कानूनी पेचीदगियां और शोहरत को नुकसान पहुंचने का खदशा होता है। इसी तरह अगर पुराने नंबर से मुंसलिक बैंकिंग या मालियाती एप्स महफूज न की जाए तो माली धोखाधड़ी और गलत इस्तेमाल का खतरा भी पैदा हो सकता है। अपने ऑनलाइन तहफ्फुज के पेश नजर ये इकदाम जरूर उठाएं। जैसे ही कोई नंबर अपने नाम से हटाएं या तब्दील करें, फौरन अपने तमाम सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स अपडेट कर लें। अपने बैंक, माइक्रो फाइनेंस और पेमेंट ऐप्स में हमेशा अपना मौजूदा और फाल नंबर रखें। अकाउंट्स में मजबूत सिक्योरिटी फीचर्स फाल करें, जैसा कि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन और अकाउंट रिकवरी की सेटिंग्स। डिजिटल तहफ्फुज का आगाज सिम के जिम्मेदाराना इस्तेमाल से ही मुमकिन है। बर वक्त और पेश के इकदाम आपकी शनाख्त, माली तहफ्फुज और कानूनी हैसियत में मददगार साबित होते हैं। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम, पीटीए।

0: 6:08 a.m. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL. HBL Freedom Account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL.
1: महराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शॉबी सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और शॉबी जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।
0: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट
2: 100 FM.
0: HBL Freedom Account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL.
3: This program is brought to you by
4: Sarsabz Nitro Force ko laga aur jeet taaja
3: and
5: Tabal Family Mixture line umrah par jaye
0: and HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL.

0: FM 100 31 साल FM 100 आपकी आवाज अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान
1: अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान पाकिस्तान

0: 8:15 AM. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: HBO Freedom Account के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBO Freedom Account, जहां ख्वाब वहां HBO.
2: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शॉबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जर्नल होम्यो और शॉबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
1: HBO फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBO फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBO.
0: This program is brought to you by
3: Sir Sabz Nitro Force ko laga aur jeet taja
0: and
4: Tabal family with Sherline Umrah par jaye
1: and HBO Freedom Account, jahan khwab wahan HBO.

is facebook.com/FM247365. FM247365.

us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: चूटी जितनी हैसियत है तुम्हारी, जो मसल के फेंक भी दूंगा ना कोई ढूंढ नहीं पाएगा तुम।
1: तुम्हारे भाई ने गुनाह किया और उसकी सजा उससे मिलकर रहेगी।

0: पाकिस्तान हमसे है, हम अच्छे तो पाकिस्तान अच्छा। तो आओ अहद करें कि जैसा पाकिस्तान हम देखना चाहते हैं वैसे खुद बनकर दिखाएंगे, क्योंकि हम बदलेंगे तो बदलेगा पाकिस्तान। अज़्म इस्तेहकाम मुस्तहकम पाकिस्तान।
1: मुफाद आमा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
2: FM 247 365। किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत।
3: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे ना लगे।
2: मुझे पता है कि मेरा वजन ज्यादा

0: It's 9:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwaber Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: HBO Freedom Account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBO Freedom Account, jahan khwab wahan HBO.
2: महयारा देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है. शॉबी सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें. डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और शॉबी जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम.
1: HBO फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ. HBO फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBO.
3: इसने कहा था पैसे

0: It's 9:30 a.m. This time check is brought to you by
1: AGS Tubular Battery hai to dil to hai ara
0: HBO Freedom Account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath HBO Freedom Account jahan khwab wahan HBO
2: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शॉबी सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जर्नल होम्यो और शॉबी सिंगल रेमेडीज भरोसे देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल
0: मुफ्त फंड ट्रांसफर मुफ्त चेकबुक मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट
3: 100 FM
0: मुफ्त फंड ट्रांसफर मुफ्त चेकबुक मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट
4: This program is brought to you by
5: Sir Sabs Nitro Force ko laga aur jeet taja
4: and
6: Tabal Family Mixture line Umrah par jaye
0: and HBL Freedom Account jahan khwab wahan HBL

0: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट। This program is brought to you by
1: Sir Sabs Nitro Force ko laga aur jeet taja
0: and
2: Tabal family mixture line umrah par jaye
0: and HBL freedom account jahan khwab wahan HBL।

like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: It's 10:30 a.m. This time check is brought to you by
1: AGS Tubular Battery hai to, dil to hai aaram.
0: HBO Freedom Account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
2: महिराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है. शॉबी सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें. डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉबी जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम.
0: HBO फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ. HBO फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
3: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. 365.

0: 10:45 AM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
0: HBL Freedom Account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
2: 100 FM.
0: Muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account.
3: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियां पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं तो बराहे करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
4: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
5: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सरदर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
4: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
6: क्या आप जानते हैं कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स की जानिब से मुख्तलिफ वैल्यू एडेड सर्विसेज फराहम की जाती हैं? इन सर्विसेज में रिंगटोन्स, ब्रेकिंग न्यूज अलर्ट्स, मिस्ड कॉल अलर्ट, इंटरनेट बंडल्स, गेम्स और दीगर मालूमाती सहूलियात शामिल हो सकती हैं। ताहम बाज़ औकात ये मुशाहिदा सामने आया है कि सारिफ की इजाजत के बगैर कोई वैल्यू एडेड सर्विस फाल हो जाती है या बैलेंस से रकम कट जाती है, जबकि सारिफ को इसका इल्म भी नहीं होता। याद रखें कि वैल्यू एडेड सर्विस की फालियत के लिए सारिफ की तस्दीक जरूरी होती है, जिसके लिए अमूमन ओटीपी की तस्दीक या मखसूस यूएसएसडी को डायल करना लाजिम होता है। याद रखें, पीटीए टेलीकॉम ऑपरेटर्स को वैल्यू एडेड सर्विस खुदकार तौर पर एक्टिवेट करने की इजाजत नहीं देता। अगर आपने ना तो ओटीपी शेयर किया है और ना ही कोई कोड डायल किया है तो ऐसी सर्विस फाल नहीं होनी चाहिए। अगर आपके साथ भी ऐसी सूरत हाल पेश आए तो परेशान होने की जरूरत नहीं। सबसे पहले अपने मुतल्लिका टेलीकॉम ऑपरेटर से राब्ता करें और बाकायदा शिकायत दर्ज करवाएं। ऑपरेटर आपको एक शिकायत नंबर फराहम करेगा। अगर मुकर्रर वक्त के अंदर आपका मसला हल ना हो तो आप पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी के ऑनलाइन पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। शिकायत के अंदराज का तरीकाकार ये है कि सबसे पहले वेबसाइट complaint.pta.gov.pk पर जाएं। शिकायत के अंदराज के लिए सारिफ को अपने नाम और शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के जरिए एक यूजर प्रोफाइल बनाना होगा। इसके बाद साइन अप के ऑप्शन पर क्लिक करें और मतलूबा मालूमात फराहम करें, जिनमें नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, राब्ता नंबर, शहर का नाम और पासवर्ड शामिल होंगे। इसके बाद

0: जेनरेट ओटीपी पर क्लिक करें और मौसूल होने वाला वन टाइम पासवर्ड दर्ज करें। अकाउंट बनने के बाद साइन इन करें और अपना CNIC और पासवर्ड दर्ज करके लॉग इन हो जाएं। याद रखें कि आपका कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर ही आपका यूजर नेम होगा। लॉग इन होने के बाद बाएं जानिब मौजूद रजिस्टर न्यू कंप्लेंट के ऑप्शन पर क्लिक करें। अब शिकायत की तफसीलात दर्ज करें और शिकायत की नौयत मुंतखब करें। इसके बाद शहर, सर्विस, फराहम कुनंदा की किस्म और दीगर मतलूबा मालूमात फराहम करें। अगर आपकी शिकायत किसी मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर से मुतालिक है तो इस बात को यकीनी बनाएं कि आपके पास वो शिकायत नंबर मौजूद हो जो आपको ऑपरेटर के पास शिकायत दर्ज कराते वक्त फराहम किया गया था, क्योंकि PTA के पास शिकायत के अंदराज के लिए ये नंबर देना जरूरी होता है। अब कंप्लेंट नंबर दर्ज करें और कंप्लेंट समरी में अपनी शिकायत की तफसील लिखें। जरूरत के तहत मुतल्लिका फाइल भी मुंसलिक की जा सकती है। इसके बाद कवायद और जवाबित कबूल करते हुए अपनी शिकायत बाकायदा तौर पर सबमिट कर दें। शिकायत सबमिट होने के बाद आपको एक रेफरेंस नंबर मौसूल होगा जिसके जरिए आप अपनी शिकायत का स्टेटस भी मालूम कर सकते हैं। मजीद मालूमात के लिए PTA के टोल फ्री नंबर 0800-55055 पर राब्ता करें। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम PTA।
1: ये मुफादे आमा का पैगाम आप तक पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है।
2: FM 247/365

0: 11:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शोबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और शोबे सिंगल रेमेडीज भरोसे देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
2: कहीं अनजाने में आप दहशतगर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मुहतात रहें। अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज़ इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें। हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है। याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है। हुकूमत पाकिस्तान।
0: मुफादे आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
3: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365 FM 247365

0: It's 11:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
1: पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से तमाम मोबाइल फोन साफी को आगाह किया जाता है कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि उनके कंप्यूटराइज कौमी शनाख्ती कार्ड फाल होने चाहिए। याद रखें, अगर आपके जेर इस्तेमाल सिम के साथ मुंसलिक शनाख्ती कार्ड मंसूख कर दिया गया है या इसकी मियाद खत्म हो गई है या शनाख्ती कार्ड का हामिल फर्द वफात पा गया है तो आपकी मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल की जा सकती है। लिहाजा किसी भी जहमत से बचने के लिए मोबाइल फोन साफिन को चाहिए कि जिन शनाख्ती कार्ड की मियाद खत्म हो चुकी है उनकी फौरन तजदीद करवाएं। शनाख्ती कार्ड की मंसूखे से मुतालिक किसी भी मसले के हल के लिए नात्रा से रजू करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि सिम किसी वफाशुदा फर्द के शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड ना हो। अगर आपकी सिम किसी वफाशुदा शख्स के शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड है तो कानूनी वारिस मुतलका कंपनी के सर्विस सेंटर मजाज फ्रेंचाइजीज पर जाकर जरूरी दस्तावेजात जमा करवाकर सिम की मलकियत अपने नाम करवा सकते हैं। शनाख्ती कार्ड की बर वक्त तजदीद मोबाइल फोन सार्फिन के तसलसल को यकीनी बनाने में मददगार साबित हो सकती है, क्योंकि ये आपकी शनाख्त के तहफ्फुज और सार्फिन को महफूज टेलीकॉम सर्विसेज की फराहमी के लिए पूर अज़्म है। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम पीटीए।
0: FM 24/7/365

0: FM 100's time check. It's 12 noon.
1: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
2: FM 247365. FM 100.
3: 31 साल FM 100 आपकी आवाज. अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान.
2: अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान.

0: Saga.
1: It's 12:45 p.m. This time check is brought to you by

0: लिंक्स पर क्लिक न करें। व्हाट्सएप लिंक डिवाइसेस चेक करें। सेटिंग्स लिंक डिवाइसेस, अगर कोई नामालूम डिवाइस नजर आए तो फौरन लॉग आउट करें। फोन लॉक और बायोमेट्रिक इस्तेमाल करें। अगर फोन महफूज नहीं होगा तो व्हाट्सएप भी महफूज नहीं रहेगा। पिन, फिंगरप्रिंट या फेस लॉक जरूर फॉलो करें। याद रखें, व्हाट्सएप हैकिंग कोई तकनीकी जादू नहीं बल्कि ज्यादातर इंसानी गलती की वजह से होती है। थोड़ी सी आगाही और एहतियात से आप खुद को महफूज रख सकते हैं, अपने घर वालों को बचा सकते हैं और अपने दोस्तों को नुकसान से बचा सकते हैं।
1: ये मुफादी आमाल का पैगाम अब तक पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है।
2: facebook.com/fm247365 FM 247 365

0: 1:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिले भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशिश।
0: This program is brought to you by
2: Step School से फाउंडेशन हो स्ट्रांग। कॉल नाउ एट 03111117837.
0: Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.

আসসালামু আলাইকুম, আসসালামু আলাইকুম পাকিস্তান। মেরা নাম নদীম আখতার আর প্যার সে আপ লোগ মুঝে কেতে হো এন এ সোন হাবিবি হ্যাপি আর্স মে কহুঙ্গা আপকো খুশ আমদীদ আপকা আর মেরা সাথ হ্যায় জনাব তিন বজে তক আর তিন বজে তক করেঙ্গে খুব হল্লা তে গুল্লা। इस अलगुले में शामिल होने का बहुत ही आसान सा तरीका है, अपने मोबाइल के राइट मैसेज में जाइए, के चाय लिखिए, स्पेस दीजिए अपना प्यारा सा नाम, प्यारा सा मैसेज और उसको सेंड कर दीजिए 3636 पर। जो लोग इस वक्त कार ड्राइव कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज ट्रैफिक सिग्नल की पासदारी कीजिए और रात को हेडलाइट लो बीम पर रखें, बड़ी मेहरबानी होगी। यानी कि समझ रहे हैं ना, संडे का दिन है, छुट्टी का दिन है और जाहिर है संडे का जब मैं प्रोग्राम करता हूं तो छुट्टी के हवाले से जरूर बात होती है, खुसूसी तौर पर नाश्ते के हवाले से और लंच के हवाले से, क्योंकि ये कुछ इसी टाइप का बन जाता है, नाश्ता प्लस लंच। सुकून से उठना, अब सुकून से मुराद ये कि देर से उठना, तो देर से उठने की वजह से ना टाइम नाश्ते का होता है और लंच का टाइम होता है, बेसिकली उस पर नाश्ता कर रहे होते हैं। खैर जी, इस तरह तो होता है, इस तरह के कामों में कोई ना कोई मैं सवाल फ्लोट करता हूं, आप देते हैं उसका जवाब। और सवाल से पहले करता हूं आप लोगों को वार्म अप। वार्म अप करने के लिए चलाते हैं जनाब गाना, और आज कुछ मूड हो रहा है पॉप ट्रैक सुनने का, वो भी ओल्डी गोल्डी, ओल्डी गोल्डी नहीं, मिक्स चलेगा लेकिन आगाज उसी से करेंगे, फाखर की आवाज से। एलो पढ़ो

0: वेलकम बैक आएंगे सुनियो आप सबको, मैसेजेस आपके आना शुरू हो चुके हैं, उनकी जाने बढ़ेंगे। पहले एक सवाल फ्लोट कर देते हैं एमी, जवाब दे देंगे तो अच्छी बात है, नहीं भी देंगे कोई मसला नहीं है। बताएं वो क्या है जो अंधेरे में भी नजर आता है। सोच रहे होंगे कि यार आई ऐसी चीज अंधेरे में भी नजर आ रही है, तो ये आपने मुझे बताना है कि वो कौन सी चीज है जो अंधेरे में भी नजर आती है। और बढ़ते हैं वरन से बेशतर आपके मैसेजेस की जान है। आसिफ अली क्लिफ्टन से हैं और कह रहे हैं सुने आपको और तमाम लिसनर्स को अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज है कोई भी? अच्छा अच्छा, सिरे की गाना सिंगिंग अगर चल जाए तो क्या बात है। बिल्कुल कोशिश करेंगे। यूसुफ भाई पापा उससे भी आगे हैं और तमाम सुनने वालों को सलाम कहा है उन्होंने, एफ एम 100 की तमाम फैमिली को भी सलाम कहा है, आंटी को, चाची को, रूसा को, गुलबानों को, तमाम डॉक्टर्स को, इमरान भाई, खिताब गुल लाला, गुफरान भाई, वालिद मोहतरम को भी सलाम कहा है। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कैसे हैं यूसुफ भाई? खैरियत से? आज तो घर पर होंगे या नहीं, बताइएगा जरूर। अरे भाई फुल फॉर्म में हमारी मुश्क भी आ गई है, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम हैंडसम, क्या हाल है? हम भी माशाल्लाह ठीक है, आज जल्दी उठ गए, दोबारा नींद नहीं आई, आपकी आवाज सुनकर दिन अच्छा कर दिया, थैंक्स हैंडसम। आपके शो की सब फैमिली मेंबर्स को आदाब, फर्स्ट सॉन्ग जबरदस्त था और नाश्ते में वो कर रही है जनाब पठान की होटल का पराठा है और साथ में चाय और अंडा, अरे क्या बात है। लंच का अभी फैसला नहीं हुआ, अभी कहाँ होगा है मुश्क, अभी तो अंडा पराठा खाया जा रहा है इस वक्त। तो जाहिर है टाइम लगेगा अभी, फिर भूख लगने में 4-5-6 बजे, यही सिलसिलाकार होता है खुसूसी तौर पर। अरे संडे को छूट है यार आप लोग, कोई मसला नहीं, हफ्ते में एक दिन ऐसा हो गया तो क्या है भाई। लेकिन कुछ लोगों को आदत होती है और बड़ी अच्छी आदत होती है छुट्टी हो या ना हो जल्दी उठने की। ये हमारे वालिद मोहतरम और हमारे बड़े भाई साहब, अल्लाह ताला दोनों को लंबी उम्र अता फरमाए सेहतियाबी के साथ, मेरे बड़े भाई साहब और मेरे वालिद साहब, छुट्टी है कुछ भी है भाई सुबह उठ जाएंगे अपने टाइम पर, आराम भी कर लो भैया नको। तो अब जाहिर है जब बड़े घर के जो है वो सुबह उठे हुए हैं तो फिर हम तो हाँ उठना पड़ता है, हर एक के घर में इस तरह का सीन होता होगा जिसमें जल्दी उठ जाते हैं। अच्छा मैं सिर्फ और सिर्फ छुट्टी के हवाले से बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि मामूल बना लें आप। हमारी शहजादी वहना जरीन नूर भी आ गई हैं और कह रही है सलाम, कैसे हैं वाले साहब? कैसे हैं संजू को और तमाम सुनने वालों को उन्होंने सलाम कहा है, वालेकुम अस्सलाम। मुश्क पूछ रही है सवाल की है हैंडसम, बहुत ही आसान सा सवाल है, इंसान की नजरें तो बहुत तेज होती हैं, दूर दूर तक देख रही होती है, वो अलग बात है कोई सिंगल फेस हो जाए, यानी कि किसी का दूर का या करीब का फेस हो जाए तो चश्मा लगाना पड़ जाए, लेकिन चश्मा लगा कर भी तो साफ नजर आता है। खैर जी नजर आने की बात हो रही है तो ये बताएं आप कि अंधेरे में वो कौन सी चीज है जो अंधेरे में नजर आती है। और जनाब अलीमुद्दीन यूसुफ जई साहब भी आ गए हैं और क्या कहते हैं, इनका मैसेज जो है ना वो स्क्रॉल करके देखना पड़ता है। वाजिबुल एहतराम मख्तर भाई साहब अस्सलाम वालेकुम, प्लीज सजाद अली नौजहान की आवाज में कोई सॉन्ग सुनवा दीजिएगा, मेहरबानी होगी। समी शेख, नसीम कुरैशी, अयूब आफरीदी, खिताब गुल्लाला, इमरान रियाज और आपके इंतहाई वाजिब एहतराम वाले मोहतरम जावेद अख्तर साहब की खिदमत अकदस में मेरा अकीदत भरा सलाम पेश कीजिएगा। दुआ दिल से दुआ है कि अरूसा मेमन बहन को अल्लाह ताला से तो कामिला अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। हर लम्हा दुआ गो ने ख्वाहिशात के साथ अलीमुद्दीन यूसुफ जई साहब एफबी एरिया कराची। क्या बात है, क्या बात है। और हमारी प्यारी सी अरूसा बहन के लिए दुआ आप सबसे भी है, गुजारिश कीजिए भाई कीजिए। चाहत भाई आपको और सब सुनने वालों को सलाम, एसगुल मैं मानूर की दोस्त भाई अंधेरे में तो मुंह ही नजर आता है। किसका मुंह नजर आ जाता है अंधेरे में, ये भी तो बता दो चाहत। चाहत महानूर की दोस्त। अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अब याद आ गया, चाहत तुम्हारा एक मैसेज बड़ा खतरनाक सा आया था जो मैंने पढ़ा भी नहीं था, यानी कि समझ रही है ना, तो आज चाहत जाग रही है भाई, नाम भी गया चाहत। वाह आज दूल्हे मियां भी आ गए हैं जनाब, कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई, कैसे हैं आप? सब सुनने वालों को सलाम, कैसे हैं नदीम जानू? ये कौन सा स्टाइल है भाई? अच्छा प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, अभी शादी होने वाली है, जानू जरा चाय तो लाना। नाश्ते में आलू का सालन और अंडा खाया है, आलू के सालन के साथ अंडा लिख देते, एग लिखने की क्या जरूरत है? अच्छा जी मीठे में चाय और चॉकलेट वाले बिस्किट थे। अजीब गरीब नाश्ता है वैसे, आलू का सालन और वो भी इन्होंने अंडे के साथ खाया है। लोग पराठे के साथ खाते हैं, डबल रोटी के साथ खा लेते हैं, आप अंडे के साथ खा रहे हैं, और मीठे में इन्होंने चाय के साथ चॉकलेट। वाह वाह वाह वाह, चॉकलेट वाले बिस्किट, वाह वाह वाह वाह वाह भाई, सही जा रहे हैं आप। और कह रहे हैं आपकी पसंद का सॉन्ग प्ले कर दीजिएगा, रोटी थी साथ में। तो लिखो ना। इसी बात पर जाएंगे जनाब एक छोटी सी ब्रेक की जाने।
1: This program is brought to you by
2: Step School से Foundation Ho Strong. Call now at
1: 03111-7837. FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
3: FM247365. توہین رسالت، نفرت آمیز تقریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے۔ سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب، ٹویٹر یا کیبل ایف ایم پر اس نوعیت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو ایف آئی اے، سائبر کرائم ونگ، پی ٹی اے یا پیمرا کو فوری اطلاع کریں۔ ذمہ دار شہری بنیں، میڈیا، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں۔ مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو پیمرا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔

वेलकम बैक कहेंगे सुने ओ रंगी है अली जफर साहब। मैसेजेस आपके आ रहे हैं कि चाहे स्पेस आपका नाम आपका मैसेज उसको सेंड कर रहे हैं 3636 पर। एक शख्स जो है वो अंडा पराठा खा रहा है और एक जो है आलू के सालन के साथ अंडा वो भी रोटी बाद में। कह रहे हैं कोई धमाकेदार किस्म का ट्रैक हो जाए नदीम भाई आज तो। अभी मैं कौन बगैर धमाके के चला रहा हूँ बताओ तो सही समी भाई दूल्हे मियाँ। एक ट्रैक आपको डेडिकेट करूंगा मैं अपनी जानिब से और FM 100 की जानिब से। वो आपको जैसा भी होगा धमाकेदार ही लगेगा। अब वो गाना जब चलेगा तब आपको पता चलेगा। अच्छा भाई सवाल का जवाब है, जवाब हमने महफूज कर लिया है और जरीन नूर कह रही है। आसिफ अली कहते हैं अल्लाह ताला अरूसा सिस्टर को जिंदगी सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए आमीन सुम आमीन। यूसुफ भाई कह रहे हैं कि अरे यूसुफ भाई अच्छा अच्छा अच्छा वही मैसेज दोबारा तकरीबन आ गया लेकिन जो मैंने पूछा था वो यूसुफ भाई ने बता दिया कि आज वो कंपनी में रुके हुए हैं। यार ये तो जुल्म है यार, बीवी बच्चों को भी टाइम दिया करें ये भी तो जरूरी है। खैर छुट्टी तो होती होगी। अच्छा जनाब चाहत जो है LLB की स्टूडेंट होने इसलिए सिर्फ संडे मंडे ट्यूसडे सुनती हूँ, ज्यादा देर तक जाग नहीं सकती। अच्छी बती अच्छी बात है, अच्छी बच्ची हो। LLB का फुल फॉर्म क्या है चाहत जरा ये बताओ। मुझे नहीं पता तुम बताओ LLB का फुल फॉर्म क्या है ये चाहत बताएंगी जो कि पढ़ रही है LLB। और अंधेरे में तो आप ही नजर आते हो चश्मा लगा कर भी नहीं और लगा कर भी मजाक का हम बुरा नहीं मानते कोई मसला नहीं है हैंडसम ये मेरी तारीफ है और मुझे अपने जैसे लोग पसंद हैं, थोड़े से पागल थोड़े से जिद्दी गुस्से के तेज और दिल के साफ। प्लेलिस्ट A1 है एनर्जेटिक वाओ। अभी आगे भी अच्छे है गाने हैं बहुत, काफी दिनों के बाद मैं ये गाने सुन रहा हूँ। पहले आकर प्लेलिस्ट बनाई यानी कि समझ रही है ना। और जनाब इसी बात पर हम आपको लेकर चलते हैं एक और बहुत जबरदस्त ट्रैक की जानिब और वकार अली का ट्रैक है, मुझे बड़ा पसंद है और किस किस ने पहले ये सुना हुआ है ट्रैक जरूर बताए मुझे। एलो फड़ो

0: Happy Hour with Nadeem Akhtar.
1: 100% Power FM. 100 FM 100
0: This program is brought to you by
2: Step School Se Foundation Ho Strong. Call now at 0311-111-7837.
3: किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत.
4: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे ना लगाएं.
5: जी हाँ, मुझे भी लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ.
4: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं. सामने वाले पर क्या गुजरी हमें से क्या.
5: मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी. अपना BMI चेक करवाए,
3: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचे, वेट से आगे का सोचे.
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
6: वेलकम बैक. जिन्होंने अभी भी ज्वाइन किया है उनको बता दे जनाब, मेरा नाम है नदीम अख्तर और प्यार से आप लोग मुझे कहते हो मैंने जाने. हाँ, प्यार्स में मैं हूँ आपके साथ, आपका और मेरा साथ है जनाब 3 बजे तक. और 3 बजे तक ये हल्ला गुल्ला जारी हो सारी. इसमें शामिल होने का बहुत ही आसान सा तरीका, अपने मोबाइल के राइट मैसेज में जाई के जाए लिखिए, स्पेस दीजिए अपना प्यारा सा नाम, प्यारा सा मैसेज और उसको सेंड कर दीजिए 3636 बार. सवाल है कि वो क्या चीज है जो हमें अंधेरे में नजर आती है. इसका जवाब आ रहे हैं मेरे पास, अच्छे अच्छे आ रहे हैं, बहुत ही अच्छे आ रहे हैं भाई. और अंधेरे में तो जुगनू और हमारा साया भी हो सकता है. जरीन नूर मेरी प्यारी सी बहना, अंधेरे में और

0: 俺的任务啥呀？
1: 哈哈哈哈哈！啊，这里阿西夫说的是，我这 track second time 听着 ，OK。फिर इसका मतलब है कि आप जो है हमारे ही शो में सुन रहे होंगे यानी कि समझ रहे हैं ना चाहत कह रही है भाई आज मेरी सिस्टर टी उम्मीद भी सुन रही हैं भाई आपकी सिस्टर को हम खुशामदीद कहेंगे और उसके साथ कह रही हैं कि एलएलबी की स्टूडेंट हूं इसलिए संडे मंडे का अच्छा ये तो मैंने पढ़ लिया था उसके बाद कहा है इन्होंने वकालत पढ़ रही हूं अरे वो तो मैं समझ गया लेकिन मैंने आपसे पूछा है एलएलबी का फुल फॉर्म क्या है वकालत पढ़ रही हैं तो आप यही पढ़ रही हैं तो जाहिर है आपको पता होना चाहिए इसके बारे में बताइए एलएलबी आप में से भी कोई जो और सुनने वाले हैं वो भी अगर बताना चाहें तो बता सकते हैं किसी को अगर पता है तो अच्छी बात है नहीं पता है तो भी बता दें ये तो सवाल बन गया यार खामखा का मैं समझ रहा था सबको पता होगा खैर जी इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में और जनाब मुश्क आज फुल फॉर्म में लग रही है भाई कह रही ये सॉन्ग हमने नहीं सुना है सच्ची हैंडसम दम दम दम दम दम दम दम सॉन्ग अच्छा इनकी विश ख्वाहिश पर आमीन उनकी विश ख्वाहिश पर अपनी खुशियों के लिए एक घर बनाए और उसका पता किसी को ना दें ये मेरी सोच है आपकी सोच बड़ी दुरुस्त है बहुत ज्यादा दुरुस्त है अपनी खुशियों के लिए एक घर बनाए और उसका पता किसी को ना दें अच्छा हमेशा याद रखिएगा कि ये मौला अली का कॉल भी है कि अपने बच्चों की खुशियां उनकी कामयाबियां उसका प्रचार ना करें उसको जो है अपने तक रखें तो ज्यादा बेहतर है इसी तरह अपनी खुशियों को भी उसकी नुमाइश नहीं करें नमूदो नुमाइश ना करें ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है अब इसकी क्या वजह हो सकती है हजारों वजहें हो सकती आपको मतलब इस वक्त एआई का दौर है बेहतर तरीके से समझ सकते हैं यानी कि समझ रहे हैं ना आप हैं जी हैं जी और अलीमुद्दीन साहब क्या कह रहे हैं भाई गाना सुनवा देंगे आपको और शुक्रिया भी अदा किया है उन्होंने कि आपने जो है हमारा मैसेज को शामिल किया शो में इसी बात पर जनाब हम समी को एक गाना डेडिकेट करेंगे एफएम 100 की जानिब से और अपनी जानिब से भी समी जरा सुनिएगा आपके लिए स्पेशली

0: वेलकम बैक आएंगे सुनियो आप सबको हम आए ब्यूटीफुल ट्रैक और उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। मैसेजेस कर रहे हैं आप के चॉइस पे, आपका नाम आपका मैसेज उसको सेंड कर रहे हैं आप 3636 पर। समी तुम्हें गाना डेडिकेट किया, कहां गायब हो गए वो शहजादे, जरा बताओ तो सही। और अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई, मैं सनम, आज बेटी और दामाद आने वाले हैं खाने पे, तो बिरयानी बना रही हूँ और साथ में आपका शो भी सुन रही हूँ। आज का शो तो शुरू से ही धमाकेदार है, तो एंड तक क्या होगा नदीम भाई, किस तरह मैसेज भेजूं, ज्यादा से ज्यादा आप समझ रहे हैं ना भाई, आप बिरयानी बनाए। सब सुनने वालों को सलाम का है, अयूब लाला को एक सॉन्ग, खबर शो कले और समी को वीर मेरा कोड़ी चढ़ेगा। अभी तो उसको मेहंदी वाला गाना डेडिकेट कर दिया ना मेरी बहना, तो उम्मीद करता हूँ कि उसको पसंद आया होगा। इसी भी खुश रहने दो, घोड़ा लेकर भाग जाएगा इसको अगर कोड़ी चढ़ेगा तो। और लाला को ट्रैक खबर शो, आपको पश्तो भी आती है, क्या बात है, जबरदस्त। और उम्मीद भी सुन रही है, ये वैसे नाम खूब रखे हुए हैं चाहत, हमारी प्यारी सी लिसनर। अरे मेरी बहन, चाहत नाम तो समझ में आ रहा है, उम्मीद भी नाम रखा हुआ है, क्या जबरदस्त चुन के नाम रखे हुए हैं घर वालों ने, अच्छे नाम है, मतलब ये तारीफ कर रहा हूँ। इस तरह तो होता है इस तरह के कामों। सवाल मैंने आज ये किया है आप लोगों से कि आप लोगों ने ये बताना है कि वो क्या चीज है जो अंधेरे में नजर आती है। वक्त अब ऐसा हो गया है कि हम आपको गाना भी नहीं सुना सकते, उसकी वजह ये है कि कुछ ही देर के बाद एक घंटा तब्दील हो जाएगा, 1 से 2 बज जाएंगे। तो बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, लोग बेवजह उदासी के सबब पूछेंगे, ये भी पूछेंगे कि तुम इतने परेशान क्यों, मुश्किल इतनी अच्छी सी बात की उसके बाद गायब हो गई हो, वही अपनी खुशियों वाली। तो अचानक से जो है लगता है सब कुछ खाने पीने लगे हैं, रफ्तार जो है वो थोड़ी सी सुस्त हो गई है मैसेजेस की। और क्योंकि ये शो बिल्कुल ही डिफरेंट होता है, टाइमिंग डिफरेंट होती है, तो बहुत ऐसे मेरे लिसनर्स जो रात को भरपूर तरीके से पार्टिसिपेशन कर रहे होते हैं, मेरे ज्यादातर शोज जो हैं वो लेट नाइट और नाइट को होते हैं, तो दिन को सिर्फ मेरा यही शो होता है इतवार वाले दिन, तो शायद ये भी वजह हो। मुझ कह रही है अरे आपका दिमाग खा रही हूं, मेरा दिमाग नहीं खाओ, बकरे का खा लो, गाय का खा लो, यानी कि समझ रही है ना। वैसे मगज जो है वो फ्राई मगज, वैसे तो वो कटाकट में भी जो मिक्स कटाकट होती है वो, उसमें तो ये खैर सिलसिला होता ही है, लेकिन उसके अलावा भी मगज जो है वो वैसे भी पकाया जाता है, चाहे वो बकरे का हो या गाय का हो, किस किस को पसंद है जरा मेरे को बताओ। LLB के हवाले से मैंने सवाल किया था चाहत से, तो चाहत ने तो अभी तक जवाब नहीं दिया। चाहत जवाब दो इसका भाई, वकील बनने वाली हो तुम्हें तो फर फर जवाब देने चाहिए हर बात के, यानी कि समझ रही है ना। तो इस हवाले से भी बताइए और आप लोग भी बताइए। अच्छा भाई, मुझको कटाकट पसंद नहीं, बकरे से बनती है, अरे ये क्या बात हुई, चिकन खाती हूँ भाई मैं। ये आजकल के जो है नौजवान जो है स्पेशली खाने पीने के मामले में कंजूस है। अच्छा भाई, हमारे प्यारे से समी भाई ने शुक्रिया अदा कर दिया है, लगता है कि आलू और अंडा खाते खाते इन्होंने वक्त निकाला और उसके साथ ही हमें मैसेज कर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया भैया आप। अभी फिलहाल हम जाएंगे जनाब एक छोटी सी नन्ही मुन्नी सी ब्रेक के जाने।
1: FM 100's time check. It's 2 p.m. This program is brought to you by
2: Step School Se Foundation Ho Strong. Call now at 0311117837.
3: Like us on facebook.com/FM247365.
4: قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے. وسائل سے زیادہ آبادی کے بوجھ سے توازن بگڑ جاتا ہے.
5: گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
6: ہماری ذمہ داری ہے. خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں.
7: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
1: ایف ایم 100 31 سال ایف ایم 100 آپ کی آواز. السلام علیکم پاکستان.
8: السلام علیکم پاکستان. پاکستان
0: ویلکم بیک کہیں گے سنے ہو آپ سب کو. اب بھائی سبھی کہہ رہے ہیں یہ یہاں شو میں بنارس آیا ہوا ہوں. ہائے بنارسی کپڑے خریدنے کے لیے شادی والا ماحول بنا دیا ہے آپ نے. وہ تو ہے جناب. تو اسی بات پر ہم بڑھتے ہیں ایک اور ٹریک کی جانب. اور یہ ٹریک جناب ہمارے علیم الدین یوسف زئی صاحب نے جو ہے وہ فرمائش کی تھی سجاد علی کی. اس کے ساتھ ساتھ عرفان میمن, میمن سسٹر ہماری جتنی بھی ہیں ان کو بھی, ساہرہ میمن کو, سلیم میمن کو, ان سب کو ہم یہ ٹریک ڈیڈیکیٹ کریں گے سجاد علی کی آواز میں. تھوڑا سا مختلف سا گانا ہے. اور اس کے بعد جو ہے جناب آصف بھائی ہے نا ہمارے آصف علی صاحب, اس نے بھی فرمائش کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ ندیم بھائی ایک سرہ کی گانا صحیح ہو جائے تو کیا بات ہے. تو آپ دونوں کی فرمائش جناب ایلو پھڑو.

वेलकम बैक कहेंगे दिल कितने खड़ा है ओ ढोलना ब्यूटीफुल ट्रैक एंड आई होप कि आपको पसंद आया होगा। और हमारी प्यारी सी भैया जरीनूर कह रही हैं संजू जब तक नहीं आएंगी मैं याद करती रहूंगी, अब तो आ जाओ। हाय लजी सो स्वीट, अच्छी बात करती रहना याद। और सनम कह रही हैं मुल्तान से कि सबको मेरा सलाम, नदीम भाई शो बहुत अच्छा जा रहा है, अंधेरे में हमेशा रोशनी ही नजर आती है, जैसे सूरज चांद सितारे हमारी नजदीक हर चीज रोशन कर देते हैं। हाय अल्लाह जी क्या बात है, भाई बिरयानी कैसी बन रही है ये बताइए सनम साहिबा, आपकी साहिबजादी और साहिबजादी के मिजाजी खुदा आ रहे हैं, यानी कि वाह वाह, मतलब अभी कुछ ही देर में हल्ला गुल्ला होने वाला है, आपके घर रौनक लगने वाली है। वैसे मेहमान भी जो है वो रहमत होते हैं और हर उस चीज से हम दूर भागना शुरू कर रहे हैं आजकल के दौर में, जिसमें अल्लाह ताला की रहमत है, क्योंकि हमें डर है अल्लाह का नहीं। अबे पैसे खर्च हो जाएंगे भाई, कल क्या होगा भाई, इतने पैसे हम ही नहीं, ना ना ऐसा नहीं सोचना चाहिए। एक वक्त था, यानी कि कुछ अरसा पहले पुरानी, कुछ सालों पुरानी बात आपको मैं बताऊं जो कि हमने अपनी आंखों से भी देखी हुई है, कि पूरी पूरी फैमिलीज जो है वो एक दूसरे के घरों में जाते थे, वीकेंड्स गुजारते थे, पूरी पूरी रात गुजारते थे, चचा ताया पुप्पो इनकी फैमिली आई हुई है, फुल टाइम जो है गहमा गहमी घरों में, कजन एक दूसरे के साथ जो है तफरी कर रहे हैं, बड़े जो है बातें कर रहे हैं, घर में पकवान पक रहे हैं, लेकिन ये नहीं डर होता था कि यार अबे भाई इतना पकाना, ये करना वो करना। अभी ये सारे सवाल आ जाते हैं, घर की खवातीन कहती है बस कर जाए, मेरा तो बैंड बच जाएगा, इतना खाना कहां से बनाऊंगी मैं, बाहर से मंगा ले भाई, ये वाले सीन हो रहे होते हैं। लेकिन उस वक्त ये भी नहीं होता था, अच्छा आप घर में मेहमान आ जाते हैं तो मेहमान फिर मेहमान बनकर बैठे होते हैं, ये भी है आजकल। उस वक्त मेहमान जब घर में आते थे, यानी कि आपके रिश्तेदार वगैरह, तो वो अब मेहमान बनकर नहीं बैठते, लड़कियां जो कजन्स हैं वो हाथ बटा रही होती थी, बड़ी खवातीन जो है एक साथ किचन में चले गए, चलो मैं भी पकाती हूँ, मैं प्याज काट देती हूँ, तू जो मसाला बना मसाला, इस तरह का सीन, और इसमें कितना बरकत होती थी। लेकिन आजकल सनम तेरी कसम नहीं हो रहा ऐसा। खैर जी आगे बढ़ते हैं और सलाम सुनियो, क्या हाल है आप, आज बाजार चला गया था सौदा लेने के लिए, ये तो अच्छी बात है, अभी आया हूँ, आज मछली चावल खाने का मूड हो रहा है। अरे बक क्या बात कर दिया है, मौसली चावल खाएगा भाई, सलीम मेमन का मैसेज हो रहा है। मौसली चावल तो ज्यादातर कौन खाता है आप सबको पता है, हाँ भाई। अच्छा जी मुश्क समी और सब लिसनर्स को सलाम भी गाया है, सलीम मेमन सा रहे मौसली चावल खा रहा है आज जो। और आसिफ साहब कह रहे हैं क्लिप्टन से, सर शुक्रिया भैया गाना चला दिया ना हमने, इसी बात पर हम जाएंगे एक ब्रेक की।

0: It's 2:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: माहिराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है. शोबे सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें. डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम.
0: This program is brought to you by
2: Step School से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग. कॉल नाउ एट 03111117837.
3: अभी राजा उस्ताद आ जाएगा, फिर मुझे कमरे में ले जाकर गलत तरीके से हाथ लगाएगा और किसी को बताने से भी मना करेगा.
4: हमारे माशरे में जिंसी बदसलूकी के वाकयात सिर्फ लड़कियों के साथ ही नहीं होते, बल्कि लड़के भी इसका शिकार होते हैं. लड़के और लड़कियों दोनों की हिफाजत का ख्याल रखें, दोनों को समझाएं, चाहे अपना हो या पराया. अगर कोई इनकी मर्जी के खिलाफ इन्हें छुए तो आपको फौरन बताएं. जिंसी बदसलूकी के बचाव के लिए बच्चों में अपनी हिफाजत करने की समझ बूझ पैदा करें. पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे को जिस्मानी और नफसियाती हक फराहम करता है. तहफ्फुज़ हर बच्चे का हक है, आए इसे यकीनी बनाएं. मजीद मालूमात और मशवरे के लिए हेल्पलाइन 1099 पे कॉल करें. वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान.
5: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया.
6: गली मोहल्लों में सफाई का खास ख्याल रखें, कहीं पर पानी खड़ा ना होने दें. डेंगू जानलेवा मर्ज है, इलाज से बेहतर एहतियात है. दिस पब्लिक सर्विस मैसेज इज ब्रॉट टू यू बाय FM 100.

0: 24-7, 265. FM 24-7, 365.
1: वेलकम बैक कहेंगे सुने ओ, मेरा नाम है नदीम अख्तर और प्यार से आप लोग मुझे कहते हो प्यार में हो आपके साथ, आपका और मेरा साथ है जनाब 3 बजे तक और ये हल्ला गुल्ला जारी हो सारी 3636 पर आ रहे हैं आपके मैसेजेस। सवाल ये है कि अंधेरे में क्या नजर आता है भाई, वो कौन सी चीज है जो हमें नजर आती है। और अभी आपने ब्रेक में जो है वो आवाज सुनी, एक आवाज सुनी शहजाद रॉय की, तो हम जाएंगे एक ट्रैक की जानिब, शहजाद रॉय की आवाज को करेंगे शामिल और ये ट्रैक हम डेडिकेट करेंगे मुश्क को। मुश्क तुम्हारे लिए ये ट्रैक, एलो फड़ो।

0: वेलकम बैक आएंगे सुनियो तेरा मुखड़ा हसी। अच्छा जनाब, बढ़ते हैं आपके मैसेजेस की जानिब। वक्त बड़ा तेजी से गुजर रहा है जनाब। अच्छा जनाब, सलीम अहमद कह रहे हैं कि मुश समी और सब लिसनर्स को मेरा सलाम कहिएगा। और मेहर आ गई है, कह रही है सलाम नदीम भाई, होप यू विल बी फाइन। आज मैं भी बिरयानी बना रही थी। अरे क्या बात है, अभी आपको ज्वाइन किया है, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। और बिरयानी के हवाले से भी बात करते हैं। अगर समी भाई शो सुन रहे हैं तो उनसे कहना कि अपनी शादी में जरूर बजाइएगा मेरे को। सलीम अहमद कह रहे हैं भाई समी बता दो। और सनम कहती है रोशनी जवाब दे रही है, चाहत कह रही है भाई लंच में आलू गोश्त है। हाय हमरा तो मुंह में पानी आ गया है, कोई बिरयानी पका रहा है, कोई आलू गोश्त पका रहा है। खैर जी, और हम दोनों बहनें बाबा की जिंदगी में उनकी शादी के 15 साल बाद आई थी, इसीलिए नाम अलग अलग हैं। अरे नहीं, नाम बड़े अच्छे हैं। 15 साल तक बाबा कहाँ थे, मुल्क से बाहर गए हुए थे क्या, जरा बताना। अल्लाह ताला तुम दोनों को सलामत रखे और नसीब अच्छे करे। LLB के बारे में नहीं बताया बच्चा तुमने। मौज कहाँ गई है, कह रही कोफ्ते बड़े पसंद है भाई। अरे भाई भाई क्या बात है, बकरे से नहीं बनती हैंडसम तो कोफ्ते कौन से, चिकन के कोफ्ते खाती हो। अरे यार कोफ्तों का मजा ही नहीं रहता फिर। मैं मीट की हूँ या बीफ की हूँ, यानी कि समझ रही है ना। और क्या कहती है भाई, मुद्दत के बाद कल रात किताबे माजी को हमने खोला, बहुत से चेहरे नजर में उतरे, बहुत से नामों पे दिल पसीजा। एक ऐसा सवा भी उसमें आया कि जिसका उन्मान सिर्फ तुम थे, कुछ और आंसुओं फिर उस पे टपके, कुछ और आंसू फिर उस पे टपके, फिर उससे आगे हम पढ़ ना पाए, किताबें माजी को बंद करके तुम्हारी यादों में खो गए हम, अगर तुम मिलते तो कैसा लगता, इन्हीं ख्यालों में सो गए हम। अरे वाह भाई वाह, अच्छा सो तो गई ना। हैंडसर सबको दुआओं दुआ में याद करती हूँ, जितने भी बीमार हैं हर नमाज में अल्लाह ताला शिफा अता फरमाए, आमीन सुब आमीन। और मेरा ईमान है कि जो किस्मत में लिखा है वो बहता हुआ पानी बनकर हम तक पहुंच कर रहेगा। आपका क्या ख्याल है? ओके ठीक ख्याल है। और एक और चीज शेयर की है, इसके सारे मैसेज पढ़ेंगे हम आज। हैंडसम ये पढ़ा है, आपसे शेयर कर रही हूँ, अगर कोई शख्स ये सोचता है कि ये दुनिया बहुत बड़ी है तो उसे चाहिए कि मोहब्बत करके देखे, उसका असल हदूद अरबा सामने आ जाएगा। बात तो सही है। और अगर कोई ये समझता है कि हमारी उम्रें बहुत कम है तो उसे साल की सबसे छोटी रात अपने पसंदीदा शख्स के इंतजार में गुजार कर देखनी चाहिए। क्या बात है, बड़ी शायराना किस्म की बातें हो रही है भाई। और कहिए एनर्जी कहाँ चलेगी, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। क्या मतलब एनर्जी कोई कम लग रही है, गाने की एनर्जी थोड़ी सी डाउन हुई थी, वो हमने ओके टेक कर दी है। और कह रही है हैंडसम थैंक यू, मैं समझी बादाम भेजा होगा, सॉन्ग अच्छा पसंद आया, खुश रहें। और कह रही है अब लड़कियां देखना छोड़ दें, हैंडसम मैं हूं ना, जस्ट जोक, क्यों देखना छोड़ दें भाई। पहली बात तो ये अल्लाह ताला ने आंखें दी हैं, देखना तो पड़ेगा। समी कह रहे हैं कि जरूर सलीम भाई, पर आपको मीठे में मेन्यू की डिश रखनी होगी। यार सलीम भाई अगर आप ये काम कर देंगे फिर तो ये बुलाएं ना बुलाएं आपको तो जाना ही है, यानी कि समझ रहे ना। और आपका फालूदा की फ्री में प्रमोशन हो जाएगी मेरी शादी में। नदीम भाई आई लव यू, मगज आई लव मगज कह रहे हैं। बेटा ये आपकी बेगम को भी पसंद होगा, जब वो आएगी ना तो फिर आपका मगज इतना खाएगी। मगज और एग मिक्स करके बनाया जाए। मुश्क आप नहीं खाओ मगज, मुझे सेंड कर दो आपके हिस्से में वाला। बात तो ठीक है। अरे हमारे प्यारे से भाना नौरेन तौसिफ भी आ गए हैं फैसलाबाद से, कहती हैं कि अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई, कैसे मिजाज हैं, ढेरों सलामती की दुआएं आपके लिए और तमाम प्यारे प्यारे से लिसनर्स के लिए भी। मैं भी बिरयानी बना रही हूँ। यार क्या बात है यार, मुंह में पानी आ गया भाई। भूल गई कि आपका शो आ रहा है, शुक्र है जल्दी याद आ गया, अब तो बहुत ज्यादा अच्छी बनेगी बिरयानी। हाय हाय क्या बात है भाई, क्या बात है, बिरयानी पे बिरयानी बन रही है। अच्छा वैसे बिरयानी जो है वो है भी स्पेशल डिश, तो अब छुट्टी का दिन है उसमें तो स्पेशल चीज बनती है ना। अच्छा मुझे बिरयानी तो खैर पसंद है ही, हर तरह की, मतलब चिकन बिरयानी हो, बीफ बिरयानी हो, मटन बिरयानी हो, आलू बिरयानी हो, ये मुझे पसंद है, सब पसंद है। मगर अगर इनमें आप कहें कि सबसे ज्यादा कौन सी पसंद है, तो सबसे ज्यादा मुझे बीफ बिरयानी पसंद है। उसके बाद नंबर आता है मटन बिरयानी का, ओए होए होए। तीसरे नंबर पर आता है आलू वाली बिरयानी, जस्ट आलू। और चौथे नंबर पर चिकन बिरयानी, यानी कि समझ रहे हैं ना, बिरयानी आज हो जाए बिरयानी, हम भी सोच रहे हैं कुछ। और आए मेरा शहजादी बहन, जीती रहो। चाहत कह रही मुझे LLB का फुल फॉर्म नहीं आता, तो मेरा बच्चा अब सुनो, ये देखा ना, बोल दिया करो नहीं आ रहा भाई, तो क्या इसमें कोई शर्म की बात थोड़ी है, नहीं आ रहा। बहुत से लोगों को नहीं पता होगा LLB का। अब LLB का सिंपल फॉर्म तो ये है कि बैचलर ऑफ लॉ, ठीक है ना जी, बैचलर ऑफ लॉ है वो LLB है। लेकिन LLB का फुल फॉर्म क्या है, बेसिकली ये लातीनी लफ्ज है और इसको मतलब प्रोनाउंस हो सकता है मैं भी गलत कर दूं, लीगम बेसालियोरियोसिस। और जो लीगम है जो है ये इसका मीनिंग है ऑफ लॉ, ऑफ लॉ। और ये बिकालियोसिस जो मैंने बताया, इस लातीनी लफ्ज है, इसमें बैचलर को जो है वो ये कहते हैं। और ये जो L लिखा हुआ ना, LLB, तो लातीनी में जो ग्रामेटिकल जो है वो L को डबल यूज किया जाता है किसी भी L के लफ्ज पर, जैसे लॉ है तो लॉ के लिए उन्होंने डबल L लगाया हुआ है, लेक्सिस, लेक्स यू कैन से, लातीनी वर्ड है लेक्स। तो इसमें लातीनी जुबान की वजह से ये LLB जो है ये इसका, इसकी मैंने आपको पूरी डिटेल बता दी है, मगर आपको ये बता दूं कि सिंपल, ऑन द सिंपल वे बैचलर ऑफ लॉ, जी बैचलर ऑफ लॉ कर रही हूं। लेकिन LLB का जिस तरह मैंने आपसे पूछा, अगर कोई पूछे तो बोलो ये लातीनी है, और ये जो LL लिखा हुआ है ये बेसिकली जब भी लातीनी में L लगता है तो डबल जो है वो L लगा देते हैं। तो ये थी इसकी सूरत हाल, ये मैंने अपनी प्यारी सी बहन चाहत को बता दिया है। और अभी हम जाएंगे एक ब्रेक की जाने,
1: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
2: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग, कॉल नाउ एट 03111717837।
1: facebook.com/fm247365
0: fm247365। वेलकम बैक कहेंगे, सुने हो आप सबको यार, बड़ी मोहब्बत में, बहुत प्यार में आपके बेतहाशा मैसेजेस मेरे सामने मौजूद हैं, वक्त बड़ा महदूद सा है तो सो चले यार आपके मैसेजेस ही पढ़ते हैं, ये ज्यादा बेहतर है। सभी कहते हैं कि नदीम भाई सब बिरयानी बना रहे हैं, कोई दावत पे भी बुला ले, नहीं बुला रहा, चले जाओ फैसलाबाद, मुल्तान, मुल्तान में हमारी बहन सनम बना रही, फैसलाबाद में नौरीन बहना बना रही, चले जाओ, मैं इस चीज की गारंटी देता हूं आपको बिरयानी मिलेगी, पहले किराया खर्च करके जाओ तो सही। अभी मैं बाहर से बिरयानी के रेट पूछा, चिकन 200 की मिल रही है। अभी कहां से मिल रही है 200 की, किसी ठेले वेले से ले रहे होगे भाई तुम, बिरयानी के जो रेट्स चल रहे हैं ना भैया, वो 400 या 500 ग्राम जो है वो 270 या, मतलब ये आम पकवान पे अगर आप चले जाएं तो 270 या 250 से कम नहीं है, 400 ग्राम या 500 ग्राम। और अगर किसी बहुत अच्छी जगह पर चले जाएं तो ये सिलसिला कार जो है 350-400 पर चला जाता है या 500 पे, तो तुम कहां से 200 रुपए की बिरयानी लेकर आ रहे भाई, जरा मुझे भी बता, एक पाव ला रहे हो या आधा पाव ला रहे हो। शॉप से पूछा है नदीम भाई, भाई जरा उस पर गौर करो, वो शॉप वाला कौन है, इतनी सस्ती सिर्फ दो ही लोग देते हैं। आपकी कौन सी साइड है? कह रहा हमारी साइड पर 200 की है। अच्छा हो सकता है, इट्स डिपेंड, बट ये कि अगर आप किसी बड़े बिरयानी सेंटर पर जा रहे हैं, अच्छे वाली शॉप्स पर जा रहे हैं, तो वहां पर इतनी सस्ती नहीं मिलती है मेरे शहजादे। और कह रहे जिंदा मुर्गी की है, समझ गया, ये कुछ पता ही नहीं होता, काश ये पता चल जाता यार कि जिंदा मुर्गी इस्तेमाल की जा रही है या मरी हुई। वैसे आपको एक बात बताऊं, जो खाने पीने वाले लोग हैं उनको आइडिया हो जाता है कि भाई ये मोरा के ठेक नहीं है यार। हैंडसम एक थी संजू, आपको याद है, बहुत अच्छी तरह याद है, यकीन माने इस शो में बहुत याद आती है। इस कमेंट का बुरा नहीं मानिएगा, क्यों भाई पता नहीं क्यों हम जल्दी भूल जाते हैं, चार दिन नजर से दूर रहकर अंदाजा होता है, सॉरी हैंडसम। अच्छा देखिए, संजू को तो ऑलमोस्ट तकरीबन हर शो में हर कोई याद करता है। हमारी प्यारी सी शहजादी बहना जरीन नूर कहती है, मैं याद करती रहूंगी, और एक मैं हूं कि पढ़ता रहता हूं। अब देखिए ये अपने मुश्क, मैं आपको एक बात बताता हूं, किसी ने नहीं रोका संजू को, संजू खुद ही नहीं आ रही, हो सकता है कि वो बिजी हूं और कहीं बहुत तंग कर लिया मादर। तो अब ये मुश्क कैसी कैसी बातें कर रही हो, जो जबरदस्त एनर्जेटिक माशाल्लाह से, थैंक यू वेरी मच। फरहीन शहजादी आ गई है, कह रही हबीबी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके, सोनियों में आ गई। तमाम सुनने वालों को उन्होंने अस्सलाम वालेकुम कहा है। ये है हमारी प्यारी सी बहना फरहीन शहजादी, और फिर तो लिफाफे ज्यादा होने चाहिए शादी में, यानी कि समझ रहे हैं ना आप, बिल्कुल होते हैं भैया, ऐसा ही है, लिफाफों के बगैर तो गुजारा ही नहीं है, जितनी महंगाई चल रही है। चले भाई, इसी बात पर हम आपको लेकर जा रहे हैं एक बहुत ही प्यारे से ट्रैक की जानेब, और अभी जो जितने भी ट्रैक चलेंगे मैं अपने पसंदीदा चलाऊंगा भाई, आप लोगों की फरमाइशें तो ऑलमोस्ट तकरीबन पूरी कर चुका हूं, मां सिवाय सनम के वो लास्ट में चलाएंगे। फिलहाल ये गाना सुने, मुझे बड़ा अच्छा लगा था।

0: वेलकम बैक आएंगे सुने हो। अब जिया न जाए अम्मा कुछ किया न जाए। ब्यूटीफुल ट्रैक और उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। मैसेजेस की जानिब दोबारा बढ़ते हैं और सलाम नदीम भाई, एक सॉन्ग अगर हो जाए तो मेहरबानी होगी। गाना जो आपने कहा ये फरंगी गाना है, फरंगी से मुराद ये कि पड़ोसी मुल्क है, ये नहीं चल सकता। ज़ोएब वफा अफरीदी, बहुत दिनों के बाद तुम्हारा मैसेज आया है, कैसे हो? और उनके साथ है समीउल्लाह मरवत सिक्योरिटी गार्ड। हाय सो स्वीट यार सिक्योरिटी गार्ड, आपको हम अपनी जानिब से गाना डेडिकेट कर देंगे, डोंट वरी। और चाहत कह रही है आज की प्लेलिस्ट जबरदस्त है, एक पख्तो संदारा अगर हो जे तो क्या बात है, दास खाना है पर उद्रेखा। और थैंक यू कहा है उन्होंने, चाहत कह रही है थैंक यू भाई, जीती रहो मुस्कुराती रहो। समी भाई एक फालूदा 350 रूपये और 400 का है, कितने लोग आ रहे हैं उसके हिसाब से आप एक चेक बनाकर भिजवा दीजिएगा। सलीम मेमन कह रहे समी भिजवा दो एक चेक। और आसिफ अली क्लिफ्टन से कह रहे सर आज स्लो सॉन्ग सुनकर मजा आ रहा है। स्लो सॉन्ग कहा है भैया, स्लो सॉन्ग सुनाऊंगा तो तुम्हें नींद आ जाएगी, यानी कि समझ रहे हैं ना आप। और मुझे तो लगता है वो बीमार या तो फिर मरी हुई मुर्गी की बिरयानी होगी, सलीम मेमन कह रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं है सलीम मेमन, देखिए मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ना ये डिपेंड करता है, मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं कि आप कहां बिजनेस कर रहे हैं और वहां के जो लोग हैं उनकी जो है कौन सी क्लास है, मतलब उनकी जेब किस चीज के लिए इजाजत दे सकती है। अब मिसाल के तौर पर जो हमारे इस शहर के ऐसे एरिया जो लोअर क्लास या मिडिल लोअर क्लास से बिलोंग करते हैं, तो वहां पर मैं कॉफी शॉप खोल लूं और एक कॉफी जो है वो 1000 रुपए की मैं बेच रहा हूं तो कभी नहीं बिकेगी, ठीक है ना, लोगों की जेब ही नहीं इजाजत देगी। और यही कॉफी शॉप अगर मैं डिफेंस क्लिफ्टन में खोल लूं तो वहां पर हो सकता है चले, ज्यादा चले, उसकी वजह वहां के लोगों की जेब इजाजत देती है। तो इसी तरह बिरयानी हर जगह जो बिक रही है तो इलाकों के हिसाब से प्राइजेस भी हैं, आप समझ रहे हैं। तो वहां जहां पर समी जहां से खरीदते हैं वहां पर हो सकता है लोगों की जेब इतनी इजाजत ना देती हो तो बिरयानी होके ठीक होगी। कितनी अच्छी अच्छी बातें कर लेता हूं ना मैं। और समी के मैसेज आए हैं, कह रहे जैसे जैसे शादी के दिन करीब आ रहे हैं दिल कर रहा है कि इतना खुश हो रहा है दिल के बस आज तक नहीं हुआ। हो जा खुश, जितना खुश होना हो जा भाई, यही है चंद अरसा खुशी का जो भंगड़े डाल रहे हो। अभी मैं अपनी उनसे के बात कह रहा था कि कल कॉल काट के कहा गायब हो गए थे, मैंने बोला दुबई वाला दोस्त आया हुआ था उसके साथ होटल पे चला गया था, तो हमारी वो कह रही थी घूम लें अभी जितना घूमना है। बिल्कुल दुरुस्त कहा उसने, ये उसकी बातों को ना एक कान से लेके दूसरे कान से नहीं निकालना, अपने दिमाग में बिठा लेना, ये जो उसने कहा है वो ये करेगी भी। और मैं वो बोला बाद में मुझे पिंजरे में बंद कर दोगी क्या, तो कह रही थी हाँ। हाय अमा को चिखाया ना जाए। सलीम भाई बहुत तेज हो गए हैं आप, बनारस पे मिल रही है बिरयानी, बिल्कुल मिल रही होगी, यहाँ का नली पुलाव भी बहुत ज्यादा मशहूर है, पिशावर वाला टेस्ट है यहाँ हर चीज का, बेशक आपने सही कहा। मुश कहती हैं गुड सॉन्ग अब जिया ना जाए, और हैंडसम आपकी आदत अच्छी लगती है, बुरा नहीं मानते हैं इसलिए दिल की बात कह देती हूँ, आपसे अपना ही और दिल का रिश्ता है साथ हूँ, शाबाश। एक स्लो सॉफ्ट सॉन्ग सिर्फ संजू के लिए अगर हो जाए तो, मगर उर्दू में हो जाएगा डोंट वरी। लॉरिन मैंने कह रही है इस पहेली का सही जवाब है चमकदार सितारे, क्योंकि सितारे अंधेरे आसमान में भी नजर आते हैं। अलीमुद्दीन क्या कह रहे हैं, सॉन्ग का शुक्रिया अदा किया है, शुक्रिया अदा किया है, वक्त बड़ी तेजी से गुजर रहा है क्या करें। اور چاہت کہہ رہی ہے کہ باپ بھائی جین آپ کو پختو آتا ہے جی او جی بول گیجی ابھی اسے بات پر ہم آپ کو ایک بہت زبردست شاندار سنائیں گے تھوڑی دیر میں سنائیں اس کا وجہ ہے اس کا وجہ یہ ہے کہ ابھی ہم جائیں گے ایک چھوٹی سی ننی منی سی بریک کی جانب اور بریک کے بعد جو ہے ہم ایک گانے کی جانب جائیں گے یعنی کہ سمجھ رہے ہیں نا آپ اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کام ایوب آفریدی لالا نہیں آئے حالانکہ ہماری پیاری سی بہنا سنم جو کہ ملتان میں ہوتی ہیں جو کہ بریانی بنا رہی ہیں بریانی آج بریانی فل ٹاپ پر چل رہی ہے بھائی تو انہوں نے کہا تھا کہ ایوب لالا کو ایک گانا ڈیڈیکیٹ کرنا پختوں کا تو ہم بالکل کریں گے ایوب لالا اگر سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے ایوب آفریدی صاحب لیکن ہم گانا ڈیڈیکیٹ کر دیں گے کہا گیا تو یعنی کہ سمجھ آئے نا ہوگا تو فی الحال جناب جائیں گے ابھی فی الحال ایک چھوٹی سی بریک کی جانب
1: This program is brought to you by
2: Step School Se Foundation Ho Strong. Call now at
1: 0311 11 7837. FM 24/7 365. FM 24/7 365.

वेलकम बैक आएंगे सुने हो आप सबको। और अभी फौरन से पेश तरफ जाएंगे एक ट्रैक की जानेब, और ये ट्रैक सनम की जानेब से अय्यूब आफरीदी को और हमारी जानेब से हमारी प्यारी सी बहन चाहत को और उम्मीद को डेडिकेट करेंगे, और जितने भी पख्तून बेन भाई सुन रहे हैं उन सबको डेडिकेट करेगा। किधर गया यार गाना, किधर गया ये पकड़ो।

वेलकम बैक कहेंगे सुनो आप सबको खबर शुक्ल जबरदस्त ट्रैक और उम्मीद करता हूँ कि आप सबको पसंद आया होगा और चाहत कह रही है थैंक यू भाई और कह रही है कि सिंगर का नाम भी बता दें ये AI ट्रैक है खबर शुक्ल बस आप लिख दें तो आपके सामने आ जाएगा और थैंक यू नवीन भाई मेरी बिरयानी रेडी है समी हो और सलीम भाई हो सब आ सकते हैं क्योंकि मैं कराची में रहती हूँ सलाम कह रही अरे वाह भाई वाह हमारी मुल्तानी सनम रहती कराची में वाह वाह इस तरह की आप बिल्कुल इजाजत ना दें किसी को ये हमारे सलीम मेमन भाई और सनम पहुंच भी जाएंगे एनीवे जनाब बढ़ते हैं उस सवाल की जानिब सवाल मैंने आपसे कहा कि भाई वो कौन सी चीज है जरा जहन में जोर दे सवाल की तरफ गौर करें वो कौन सी चीज है जो सिर्फ अंधेरे में नजर आती है तो अंधेरा तो आप आंखें बंद कर ले हो जाता है यानी कि समझ रहे ना और सितारों का जहां तक ताल्लुक है तो चांद की रोशनी होती है कि नहीं और रोशनी हो तो फिर अंधेरा कैसा तो वो चीज है जनाब आपके ख्वाब दूर जो

जुनून का गाना याद आ गया मुझे, बहुत स्लो है इसलिए नहीं चलाया। तो जनाब उसका जवाब था ख्वाब, यही ये समझ रहे हैं ना आप। वक्त तेजी से गुजर रहा है लिहाजा फौरन से पेशतर एक ट्रैक की जानिब जाएंगे जो मुश्क ने डेडिकेशन के लिए कहा था संजू के लिए, और ये ट्रैक मुश्क की जानिब से भी और जरीन नूर की जानिब से भी और अदीला की जानिब से भी और नौरीन तौसीफ की जानिब से भी हम डेडिकेट करेंगे संजू को।

वेलकम बैक कहेंगे। ओरे पिया तरसे जिया, और उम्मीद करते हैं ये हमको पसंद आया होगा। और अब आपसे चाहेंगे हम इजाजत, और इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी जनाब आपसे कल रात को। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और जाते जाते ये ट्रैक हमारी प्यारी सी बहना नौरीन तौसीफ को डेडिकेट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।

0: 247-365. FM 247-365. Let's celebrate 31 years of memory, milestone, and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
1: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.
2: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yarkhan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum. Across Pakistan, this is FM 100.
3: Assalamu alaikum, Pakistan.
4: 1, 2, 1, 2, 3, hit it!
5: Everybody says,
6: must be karne ka.
5: Everybody say joy. Come into my world.
7: Come and join it.
8: So listen to Music Musti.
9: Music Musti.
10: Assalamu alaikum Pakistan. Assalamu alaikum Karachi. आपका प्रेजेंटर महफूज अलहसन आपके साथ, और मैं नहीं कहता, कहते हैं आपके जब आते हैं महफूज तो 100% होते हैं आप महजूज, और ये आप नहीं कहते बल्कि कहता हूँ मैं कि तुसी तो बड़े ही सोने हो। दोस्तों लेकर आए हैं आपके लिए वही खूबसूरत सा प्रोग्राम जिसका रहता है आपको बेताबी, बेचैनी, बेसब्री, बेकरारी से इंतजार, और आपके बेकरार मन को आता है करार जब आता है इतवार, जिसे हम कहते हैं संडे, और मिलकर मनाते हैं फंडे। तो संडे और फंडे आन पहुंचा है, हमारा आपका प्रोग्राम आन पहुंचा है, जिसका हम तो मिलकर नाम लेते हैं, एंड द प्रोग्राम नेम इज म्यूजिक मस्ती और महफूज। म्यूजिक मस्ती और महफूज में आपको खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं, आपसे लेकर ठीक 5 बजे तक हमारा आपका साथ रहेगा। इस साथ को यादगार, शानदार, खुशगवार आप सबने बनाना है, अपने मैसेजेस के जरिए बनाना है, फेसबुक के जरिए बनाना है, और फरमाइश करके बनाना है। पुराने दोस्त हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट जानते हैं कि हमारा पहला आर होता है तेज गानों का और दूसरा आर होता है सॉफ्ट मेलोडीज का। तो अभी फरमाइश करेंगे आप तेज गानों की। अपने राइट मैसेज में जाइए, KHI लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना मैसेज टाइप कीजिए और 3666 पर रवाना कीजिए। इसके साथ साथ फेसबुक पे भी आप मैसेजेस कर सकते हैं, facebook.com/RJ Mehfooz, या फिर आप सर्च कीजिए फेसबुक पे जाके RJ Mehfooz, मेरी प्रोफाइल पे जाइए, पिक्चर स्टेटस लगा है, आइए और बताइए आपको कौन सा गाना सुनना है। प्रोग्राम में शामिल करेंगे आप ही की पसंद का पहला तेज गाना सिर्फ आपके लिए। सुनिए और वापस आइए।

0: musty. Music musty.
1: ऑल राइट, आ चुके हैं वापस। आप सुन रहे हैं म्यूजिक मस्ती और मुझे कहते हैं महफूज। हर संडे दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक हमारा आपका साथ रहता है। इस साथ को यादगार, शानदार, खुशगवार, खूबसूरत, हसीन, दिलकश, दिलनशीन आप सब बनाते हैं, आपके मैसेजेस बनाते हैं, आपकी फरमाइशें बनाते हैं, और कुछ ना सही तो आप खामोशी से सुनकर हमारे साइलेंट लिसनर्स हमारे प्रोग्राम को हसीन तरीन बना देते हैं। प्रोग्राम में 400 चांद लगा देते हैं। आप लोग बड़े स्वीट हैं, बड़े जबरदस्त हैं। आप हमें कराची में सुन रहे हैं 100 की फ्रीक्वेंसी पे रेडियो सेट्स पे। इसके साथ साथ आप हमें कराची के अलावा भी सुन रहे हैं, पूरे पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाहर भी सुन रहे हैं। fm100pakistan.com पे सुन रहे हैं। अगर आप मोबाइल यूज करते हैं, एंड्रॉइड यूजर हैं, एप्पल यूजर हैं, तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं fm100 पाकिस्तान, और बआसानी दुनिया के किसी भी हिस्से में मौजूद हैं, अपने वक्त के मुताबिक हमें सुन सकते हैं। यह है प्रोग्राम का खासा, म्यूजिक मस्ती का खासा। हम 3 बजे से लेकर 4 बजे तक आपके लिए फास्ट ट्रैक्स पेश करेंगे और 4 से 5 सॉफ्ट मेलोडीज की फरमाइश करेंगे आप, हम वो इंशाल्लाह पूरी करेंगे। तो अपने राइट मैसेज में जाइए, KHI लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना मैसेज टाइप कीजिए और 3636 पर रवाना कीजिए। इसके साथ साथ facebook.com/rjmehfooz और बताइए कि आपको कौन सा गाना सुनना है जो आपके संडे को बना दे फंडे। प्रोग्राम में शामिल करेंगे आप ही की पसंद का एक और जबरदस्त गाना। सुनते हैं और वापस आते हैं।

0: It's 3:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? श्वाबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
2: कहीं फिर से रहमो चाचा, अपना डांगा लेकर न आ जाए. वो मुझे अपनी गोद में बिठाएंगे. मैं अम्मी को भी बताने से डरती हूँ.
3: आम तौर पर यही समझा जाता है कि बच्चों के साथ जिनसी बदसलूकी सिर्फ अजनबी करते हैं, मगर ऐसा नहीं है. दरअसल ये वो लोग होते हैं जिन पर माँ बाप आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं. बच्चों को समझाएं, चाहे अपना हो या पराया, इनकी मर्जी के खिलाफ कोई इन्हें छुए तो आपको फौरन बताएं. जिनसी बदसलूकी के बचाव के लिए बच्चों में अपनी हिफाजत करने की समझ बूझ पैदा करें. पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे को जिस्मानी और नफसियाती हक फराहम करता है. तहफ्फुज़ हर बच्चे का हक है. आए इसे यकीनी बनाएं. मजीद मालूमात और मशवरे के लिए हेल्प लाइन 1099 पर कॉल करें. वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान.
0: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया. FM 100 facebook.com/FM247365. FM 247365. Music.

ऑल राइट, आ चुके हैं वापस। आप सुन रहे हैं म्यूजिक मस्ती और मुझे कहते हैं महफूज। बारी है दोस्तों आपके मैसेजेस की, मूव करते हैं हम मैसेज की तरफ। हमें मैसेज किया है रहीम ने और सलाम कहते हैं, वालेकुम अस्सलाम, पहली मरतब आप हमें सुन रहे हैं, आपको खुशामदीद कहेंगे। आपने गाने की फरमाइश की, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी फरमाइश हम पूरी कर दें। हमें हैदर मैसेज कर रहे हैं, हैदर थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, वालेकुम अस्सलाम, पहली मरतबा सुन रहे हैं, हैप्पी संडे, खुशामदीद। हमें तस्नीम मैसेज कर रही है, सलाम कर रही है, वालेकुम अस्सलाम, शो इज गुड, सॉन्ग्स आर गुड, बहुत शुक्रिया आपका, आपकी फरमाइश मैंने नोट कर ली है। आसमा फरीद हमारे साथ मौजूद है, सलाम कर रही है, ढेर सारी दुआएं दे रही है, वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया सुनने और पसंद करने के लिए। सैफ अली हमें सुन रहे हैं, सैफ अली पहली मरतबा सुन रहे हैं, मुल्तान से, आपको खुशामदीद कहेंगे, वालेकुम अस्सलाम, आपकी फरमाइश हमने नोट कर ली है। बीना हमें सुन रही है, बीना थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, वालेकुम अस्सलाम, आपने पूछा है महफूज भाई आप कैसे हैं, महफूज भाई ठीक हैं और बीना कैसी हैं। इसके अलावा सभी हमें सुन रही है, सभी थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी एंड वालेकुम अस्सलाम, आपने कहा है कि आपको बहुत अच्छा लगता है शो और आप काफी अरसे से मुझे सुन रही है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अनम हमें सुन रही है, अनम थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, वालेकुम अस्सलाम, आपकी वो फरमाइश मैंने नोट कर ली है और आपने प्रोग्राम की तारीफ की है, थैंक यू। आयशा सुन रही है, आयशा बहुत बहुत शुक्रिया सुनने और पसंद करने के लिए, आपकी भी फरमाइश मैंने नोट कर ली है। जैन सुन रहे हैं, जैन वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, आपकी भी फरमाइश नोट कर ली है। सुमेरा हमें सुन रही है, सुमेरा बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कहा भाई आप कैसे हैं, भाई बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा उजैर हमें सुन रहे हैं, उजैर बहुत बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। तो दोस्तों आप सबके मैसेजेस मेरे पास और हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन अभी इकट्ठा मैं नहीं पढ़ूंगा, थोड़े बचा के रखूंगा, उसके बाद थोड़े और आ जाएंगे, तो थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, वो फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा, फिर मैं पढ़ दूंगा, ठीक है ना। फिलहाल अपने राइट मैसेज में जाइए, KHI लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना मैसेज टाइप कीजिए, लिख दीजिए हमें 3666 पर। इसके साथ साथ फेसबुक पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और बता सकते हैं कौन सा गाना सुनना है। जनाब आपके लिए पेश करेंगे एक और बहुत ही खूबसूरत सा तेज गाना, खास आपके लिए, सुनिए और वापस आइए।

0: You are listening to Music Masti. Masti. Masti.
1: All right, आ चुके हैं वापस. आप सुन रहे हैं म्यूजिक मस्ती और मुझे कहते हैं महफूज. अच्छा, मैं अपने प्रोग्राम में ज्यादातर बिरयानी की बात करता हूँ और स्पेशल चिकन बिरयानी की बात करता हूँ, लेकिन आज हम कुछ चिकन और मटन कढ़ाई के हवाले से बात करेंगे. तो मैंने एआई से पूछा है कि चिकन और मटन कढ़ाई को पसंद करने वाले लोग कैसे होते हैं. तो एआई ने जवाब दिया, चिकन और मटन कढ़ाई पसंद करने वाले लोग आम नहीं होते, ये असली देसी दिल वाले होते हैं. इनको दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं. सबसे पहले चिकन कढ़ाई वाले, ये जिंदा दिल हल्के फुल्के मिजाज के लोग होते हैं. इनको सब कुछ गरम गरम और जल्दी चाहिए होता है. ज्यादा नखरे नहीं करते, हर दावत में खुश हो जाते हैं. दोस्तों के साथ खाने पीने को जिंदगी समझते हैं. थोड़ा मिर्च मसाला, थोड़ी गपशप, इनकी महफिल हमेशा फुल होती है. फिर बारी आती है मटन कढ़ाई वाले. इसके बारे में बताया जाता है कि असली फूडी और टेस्ट के उस्ताद होते हैं. इनको क्वालिटी पे कम्प्रोमाइज पसंद नहीं होता. सब्र वाले होते हैं, कहते हैं अच्छी चीज में टाइम तो लगता है. थोड़े खर्चीले जरूर होते हैं, लेकिन खिलाने पिलाने में सबसे आगे. इनकी नाक में और जुबान में टेस्ट का स्कैनर लगा होता है. एक बोटी खाकर बता देते हैं कि गोश्त कैसा है. और इसके अलावा जो दोनों पसंद करते हैं, यानी मटन कढ़ाई और चिकन कढ़ाई, उनके बारे में एआई कहता है ये ऑलराउंडर होते हैं. ये किसी को नाराज नहीं करते, सबका दिल जीतते हैं. घर पे चिकन, दावत में मटन, हर जगह एडजस्ट कर लेते हैं. इनको खाना सिर्फ खाना नहीं, इमोशन लगता है. रोटी, नान और ऊपर से हरी मिर्च, बस फिर इनको कोई डिस्टर्ब ना करे. अब आप मुझे बताइए कि आप कौन से वाले हैं. आप चिकन कढ़ाई वाले हैं या मटन कढ़ाई वाले हैं, या दोनों पसंद करते हैं, ये आप मुझे बताना है. अपने राइट मैसेज में जाइए, KHI लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना मैसेज टाइप कीजिए और 3636 पे रवाना कीजिए. इसके साथ साथ facebook.com/RJ महफूज. एक बहुत ही जबरदस्त गाने की तरफ मूव करेंगे. सुनिए और वापस आइए.

0: 247 265 FM 247 365 Music must be with
1: Memphis. All right, आ चुके हैं वापस. आप सुन रहे हैं म्यूजिक मस्ती और मुझे कहते हैं महफूज. मेरे दिमाग में एक बात आई कि क्यों ना आज हम 90s के पॉप सॉन्ग्स और 90s के बैंड के हवाले से बात करें. याद है ना, अगर आप मेरी एज के हैं तो आपको 90s का जमाना याद होगा. 90s का जमाना पाकिस्तानी पॉप का गोल्डन एरा था. कैसेट्स पर गाने, पीटीवी पर गाने, म्यूजिक चैनल चार्ट और एनटीएम का जमाना. उस दौर में पॉप सिर्फ म्यूजिक नहीं था बल्कि एक पूरा कल्चर था. पहले 80s में नाजिया हसन और आलमगीर ने रास्ता दिखाया, लेकिन 90s में बैंड्स आ गए. गिटार, ड्रम और उर्दू पोइट्री की जबरदस्त कॉम्बिनेशन. हर गली में कोई वाइटल साइन का स्टाइल कॉपी कर रहा होता था, कोई जुनून की तरह लंबे बाल रखकर घूम रहा होता था. बड़े जबरदस्त बैंड्स थे 90s में, लाइक वाइटल साइन. ये पॉप की बुनियाद है, जिन्हें जमशेद की आवाज में जो सुकून था वो कहीं और नहीं. दिल दिल पाकिस्तान, एतबार, गोरे रंग का जमाना, दिल हारे, आज भी सुने तो वही फीलिंग्स आती हैं. इसके अलावा जुनून, सूफी रॉक के बाप अली अजमत, सलमान अहमद, ब्रायन, उनके गाने सयोनी, दोस्ती, घूम तनाना साईं, इनके कॉन्सर्ट में जो जुनून होता था ना, नाम बिल्कुल सही रखा गया. इसके अलावा स्ट्रिंग्स, बिलाल मकसूद और फैसल कपाड़िया, बहुत क्लीन और क्लासी पॉप. सर किए ये पहाड़ दूर अनजाने. इसके अलावा एक बैंड था आवाज बैंड, हारून और फाखिर का बैंड. 90s के सबसे स्टाइलिश लड़के मिस्टर फ्रॉडिये, जादू का चराग, मैं ना मानू हार, इनके जबरदस्त सुपरहिट सॉन्ग्स. इसके अलावा बहुत सारे ऐसे सिंगर्स भी थे जिनका कोई ग्रुप नहीं, जैसे सज्जाद अली, द रियल सिंगर, जीनियस सिंगर, इनका बेबिया, सोनी लगदी, चीफ साहब, सुपरहिट सॉन्ग. अली हैदर, हर टीन एजर का हीरो, लाइक पुरानी जीन्स, जालिम नजरों से करार. अबरारुल हक, उन्होंने भंगड़ा पॉप को वापस जिंदा कर दिया. बिल्लो दे घर, प्रीतो, नच मजाजन और बहुत सुपरहिट गाने. नजम शिराज, बहुत सोलफुल आवाज, इनसे नैन मिलाकर देखो, आओ वहाँ चलें, और बहुत सुपरहिट सॉन्ग. हदीका कियानी, बहुत मीठी और पावरफुल आवाज. बूहे बारियां, दुपट्टा, इंतहा इश्क, बड़े सुपरहिट सॉन्ग. शहजाद रॉय, जो कल भी जवान थे आज भी जवान हैं, उनके जबरदस्त सुपरहिट गाने आज भी सुने जाते हैं. ये थे कुछ 90s के बैंड जिनकी हमने बात की और कुछ सोलो सिंगर्स जिनकी हमने बात की. इसके अलावा बहुत सारे और भी हैं कि अगर मैं बात करता जाऊं तो पूरा प्रोग्राम उसी में निकल जाएगा. बहरहाल, आपने मुझे बताना है कि आपके पसंदीदा पॉप सिंगर कौन थे 90s में. अपने राइट मैसेज में जाइए कि अच्छा लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना मैसेज टाइप कीजिए और 3636 पर रवाना कीजिए. इसके साथ साथ facebook.com/rjmehfooz या फिर फेसबुक पे सर्च कीजिए आरजे महफूज. मेरी प्रोफाइल पे आइए और बताइए आपको कौन सा गाना सुनना है और आप क्या कर रहे हैं इस वक्त. सारी डिटेल आप मुझे दीजिए और हम आपको सुनाने लगे एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना. सुनिए और वापस आइए.

0: You are listening to Music Masti. Masti. Masti.
1: ओके जी, वापस आ चुके हैं. आप सुन रहे हैं म्यूजिक मस्ती और मुझे कहते हैं महफूज. बारी है आपके मैसेजेस की. काफी देर से आपके मैसेज नहीं पड़े तो मूव करते हैं मैसेज की तरफ. शफकत हमें मैसेज कर रहे हैं और आपने कहा है कि आपने बहुत जबरदस्त गाने प्ले किए हैं और आपको शो पसंद आ रहा है. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. इसके अलावा अहमद नवाज हमें मैसेज कर रहे हैं, सलाम कर रहे हैं. वालेकुम असलाम, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी. आपकी फरमाइश मैंने नोट कर ली है, पूरी करने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे. इसके अलावा अली रजा हमें सुन रहे हैं, पूछ रहे हैं आपके शो के टाइमिंग्स क्या है. भाई मैं संडे को करता हूं दोपहर 3 से 5. इसके अलावा ईशा हमें सुन रही है. ईशा बहुत बहुत शुक्रिया सुनने और पसंद करने के लिए. वालेकुम असलाम, आपकी फरमाइश मैंने नोट कर ली है. तायरा हमें सुन रही है. तायरा थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी. आपने कहा है जबरदस्त गाने हैं, अच्छा प्रोग्राम है, बहुत शुक्रिया. अनवर मैसेज कर रहे हैं, अनवर ने सलाम कहा है. वालेकुम असलाम, पहली मरतबा सुन रहे हैं, आपको खुशामदीद कहेंगे. इसके अलावा आबिद सुन रहे हैं. आबिद बहुत बहुत शुक्रिया सुनने और पसंद करने के लिए. गाने आपको अच्छे लग रहे हैं, आवाज अच्छी लग रही है, ओवरऑल शो इज गुड, बहुत शुक्रिया आपका. इसके अलावा शाहिदा हमें मैसेज करी है, सलाम करी है. सर आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए आपका क्या हाल है. नजीर अहमद हमें मैसेज कर रहे हैं, सलाम कर रहे हैं. वालेकुम असलाम, बहुत बहुत शुक्रिया सुनने और पसंद करने के लिए. जमाल हमें मैसेज कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सुनने और पसंद करने के लिए. वालेकुम असलाम, आपकी फरमाइश नोट कर ली है. इसके अलावा शीजा हमें सुन रही है, शीजा थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी. वालेकुम असलाम. आप सबकी फरमाइशें मुझ तक पहुंचती हैं और आप सबकी फरमाइशें जब मुझ तक पहुंचती हैं तो यकीनन मैं उसे प्ले करने की पूरी कोशिश करता हूं. फरमाइशें बहुत सारी होती हैं और वक्त 2 घंटे का होता है तो बहुत सारी फरमाइशें रह जाती हैं, लेकिन उसको हम बैक टू बैक में पूरा कर देते हैं. आपका अपना शो है म्यूजिक मस्ती और महफूज, इसमें मैसेज कीजिए. अपने राइट मैसेज में जाइए, KHI लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना मैसेज टाइप कीजिए और 3636 पर रवाना कीजिए. इसके साथ साथ facebook.com/RJMahfooz पर भी आप मैसेज कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आपको कौन सा गाना सुनना है. एक और जबरदस्त गाना आपके लिए पेश करने लगे हैं, सुनिए और वापस आइए.

0: याद रखें, ये फ्रॉड भी हो सकता है। आइए जानते हैं फ्रॉड के आम तरीके। पीटीए बैंक के सरकारी अदारे का नुमाइंदा बनकर आपसे आपकी जाती मालूमात तलब करना, जाली कोरियर या हुकूमती स्कीमों का नाम इस्तेमाल करते हुए आपको झांसा देना, आपको मशकूक लिंक्स या QR कोड भेजना। याद रखिए, पीटीए बैंक या कोई भी सरकारी अदारा कभी भी फोन, ईमेल या पैगाम के जरिए आपसे पासवर्ड, OTP या CNIC नहीं मांगता। लिहाजा किसी भी मशकूक लिंक पर हरगिज क्लिक न करें और अपनी मालूमात हरगिज किसी के साथ शेयर न करें। और अगर कोई फ्रॉड कॉल या पैगाम वसूल हो, इसका जवाब मत दें। अपनी शिकायत का इंद्राज complaint.pta.gov.pk या पीटीए CMS मोबाइल ऐप पर रिपोर्ट करें या पीटीए की हेल्पलाइन 0800-55055 पर अपनी शिकायत का इंद्राज करें। व्हाट्सएप पर वसूल होने वाला पैगाम बराह रास्त व्हाट्सएप को रिपोर्ट करें। इसके अलावा साइबर क्राइम के हवाले से आप अपनी शिकायत का इंद्राज 1799 या complaint.nccia.gov.pk पर भी कर सकते हैं। बैंक फ्रॉड के लिए cpd.helpdesk.sbp.org.pk पर विजिट करें। याद रखें, आपकी आगाही ही आपका तहफ्फुज है। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी।
1: ये मुफादे आमाल का पैगाम अब तक पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है।
2: FM 247 365

हाँ जी आ चुके हैं वापस। आप सुन रहे हैं म्यूजिक मस्ती और मुझे कहते हैं महफूज। दोस्तों क्या कर रहे हैं आप लोग, सुबह से अब तक क्या कर चुके हैं, वीकेंड कैसा गुजरा, हॉलीडे कैसा गुजर रहा है, आज संडे वाला दिन है, आपके इवनिंग के क्या प्रोग्राम है, नाइट पे आप कहाँ जा रहे हैं, आपके घर कोई आ रहा है डिनर करने, या आप किसी डिनर पे जा रहे हैं, या आप किसी इवेंट पे जा रहे हैं, किसी शादी पे जा रहे हैं, वलीमे में जा रहे हैं, बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं, अकीके में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, या आपके घर कोई इवेंट है, तो हमें जरूर बताया करें आप अपनी मसरूफियात। और ये बताइए कि आपने वीकेंड वैसे ही गुजारा हमेशा की तरह मोबाइल देखते हुए, यूट्यूब देखते हुए, फेसबुक यूज करते हुए, या अपनी फैमिली के साथ गुजारा, अपने वालिदैन के साथ गुजारा, अपने बीवी बच्चों के साथ, घर वालों के साथ, अपने कजन्स के साथ, अपनों के साथ गुजारा, क्या किया आपने, हमें जरूर बताएगी ना। साथ साथ आप अपनी फरमाइशें तो यकीनन हमसे करते हैं, लेकिन अपनी दिल की बात भी किया करें, कोई खूबसूरत सा शेयर लिखा करें, कोई कोटेशन लिखा करें, अगर आपको कोई कामयाबी मिली है तो वो भी हमसे शेयर किया करें ताकि हम आपको मुबारकबाद दें। आपकी अगर बर्थडे है तो जरूर हमें बताया करें ताकि हम आपको हैप्पी बर्थडे कहें और आपसे केक खाएं। तो ये सारी चीजें भी करें और साथ साथ अपने राइट मैसेज में जाइए, KHI लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना मैसेज टाइप कीजिए और 3666 पर रवाना कीजिए। और फेसबुक पर भी आप मुझे मैसेजेस कर सकते हैं और बता सकते हैं आपको कौन सा गाना सुनना है। तो आखिरी का तेज गाना हम आपके लिए पेश करेंगे, इसके बाद 4 बजे हम सॉफ्ट मेलोडीज की जानिब जाएंगे, हमारा बैकग्राउंड म्यूजिक चेंज हो जाएगा, हमारी म्यूजिक चेंज हो जाएगी, लेकिन हम वही रहेंगे और आप वही रहेंगे। तो एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना, आखिरी का तेज गाना सुनिए और वापस आइए।

0: FM 100's time check. It's 4 p.m. FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
1: FM 247365. FM 100.
0: 31 साल FM 100 आपकी आवाज. अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान.
1: अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान. पाकिस्तान
2: कराची लाहौर इस्लामाबाद हैदराबाद रहीमिया खान मुल्तान अबटाबाद गुजरात जिला अक्रॉस पाकिस्तान. दिस इज FM 100.
3: Assalamualaikum Pakistan.
4: You are listening. You are listening. Music. Masti. Masti. Masti.

ऑलराइट, आ चुके हैं वापस। आप सुन रहे हैं म्यूजिक मस्ती और मुझे कहते हैं महफूज। सॉफ्ट मेलोडीज का सेगमेंट शुरू हो चुका है और पहला गाना हमने आपके लिए प्ले किया। जनाब शाम का वक्त है और शाम का वक्त म्यूजिक के साथ साथ चाय का वक्त होता है और हल्के फुल्के स्नैक्स भी होते हैं। और आजकल के जो होते हैं वो इतने मजेदार नहीं होते हैं। जो 90s के बेकरी आइटम्स हुआ करते थे उनका मजा ही कुछ और होता था। ना इतने फैंसी पैकेजिंग होती थी, ना इतना फ्लेवर होता था, बस सादगी और खालिस मक्खन, अंडे की खुशबू और जबरदस्त क्रीम। क्या बात है जी, आज की नस्ल को इतना पता ही नहीं होगा कि उस जमाने में क्या क्या बेकरी आइटम्स मिलते थे। सादे होते थे लेकिन बड़े मजे के होते थे, जैसे पापे, केक रस, ये बेकरी की शान थे, चाय के साथ लाजमी थे। ऊपर हल्की चीनी होती थी और अंदर खस्ता खस्ता दूध पत्ती चाय में डुबोकर खाने का मतलब ये था कि आधा बिस्किट चाय में ही गिर जाता था और आधा बिस्किट आपके मुंह में होता था। फिर चमचे से आप उस चाय के अंदर डूबा हुआ बिस्किट निकालते थे। अच्छा, बाज तो उस आधे बिस्किट से निकालने की कोशिश करते थे, वो आधा भी चाय के अंदर डूब जाता था। इसके अलावा दो दिल जैसे बिस्किट भी आया करते थे ना, जिसके बीच में जैम होता था, ऊपर चीनी का हल्का सा कोट होता था। बचपन में इसको खोल के पहले जैम को चाटना और फिर बिस्किट खाना, उसका मजा ही अलग था। इसके अलावा अगर आपको याद हो, क्रीम रोल आया करते थे, कागज जैसा पतला रोल, अंदर सफेद मक्खन वाली मीठी क्रीम, हाथ और मुंह दोनों क्रीम से भर जाते थे, लेकिन मजा उसी में ही था। और फिर बात करते हैं हम आलू या चिकन पैटीज, जो 90s की पार्टी के हीरो थे। केचप के छोटे से पैकेट के साथ साथ गरम पैटीज खाने का मजा ही अलग था। बाहर से तहकर खस्ता और अंदर से मसालेदार आलू या कीमे वाला चिकन वाला, क्या बात है। और बारिश में तो और ही मजा देता था। इसके अलावा बागर खानी भी थी, जो बड़ी खस्ता हुआ करती थी, बड़ी जबरदस्त होती थी। नान खताई, खुशबू वाली और बड़ी मीठी और लजीज, मुंह में रखते ही घुल जाती थी, मजा आ जाता था उसे खाने का। इसके अलावा एक मस्का बंद आया करता था, फ्रूट बंद आया करता था, सुबह नाश्ते का ये स्टार था। मस्का बंद को हल्का से तवे पे गरम करके आप चाय के साथ खाते थे और मजा आ जाता था। और फ्रूट बंद में वो जो रंगीन सी टूटी फ्रूटी लगी होती थी, जिन्हें देखकर बस तमाम बच्चे ललचा जाते थे और पहले वो टूटी फ्रूटी खाते थे और उसके बाद फिर वो बंद खाते थे। ये कमाल था उस वक्त के नाश्तों का। और बहुत सारी चीजें जो हम आपसे डिस्कस कर सकते थे। अगर आप बताइए कि आप अगर 90s के हैं और जमाने के हैं, तो आपको बेकरी आइटम्स में क्या क्या चीजें पसंद थी जो अब बहुत कम मिलती हैं, ये हमें जरूर बताइए। अपने राइट मैसेज में जाइए, कैश आई लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना मैसेज टाइप कीजिए 3666 पर रवाना कीजिए। इसके साथ साथ facebook.com/ आज महफूज पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना आप सबके लिए पेश करते हैं, आते हैं वापस।

जी मेरे दोस्तों आ चुके हैं वापस, आप सुन रहे हैं म्यूजिक मस्ती और मुझे कहते हैं महफूज। बारी है आपके मैसेजेस पढ़ने की। अगर मैं मैसेज ना पढूं तो मुझे भी बेचैनी रहती है और आपको भी अपना नाम सुनने की आदत सी हो गई है तो आप भी बेचैन हो जाते हैं। तो जिन्होंने मैसेज किया है सबके मैं नाम लेने जा रहा हूं और पढ़ने जा रहा हूं। शयान हमें मैसेज कर रहे हैं, सलाम कह रहे हैं और कह रहे हैं अल्लाह सलामत रखे आपको, आमीन सेम टू यू। और इसके साथ आपने फरमाइश की है मैंने नोट कर ली है। तनवीर मैसेज कर रहे हैं, सलाम कह रहे हैं, वालेकुम सलाम, पहली मरतबा सुन रहे हैं आपको खुश आमदीद कहेंगे। सादिया में सुन रही है, सादिया ने सलाम कहा है, वालेकुम सलाम थैंक यू और आपकी फरमाइश नोट कर लिए, हैप्पी संडे। हसनैन हमें मैसेज कर रहे हैं, हसनैन ने सलाम कहा है, वालेकुम सलाम थैंक यू सो मच फॉर लिस्टिंग मी, आपकी फरमाइश नोट कर ली है, हैप्पी संडे। इसके अलावा अवेस ने मैसेज किया, अवेस बहुत बहुत शुक्रिया सुनने और पसंद करने के लिए, आपकी भी फरमाइश मैंने नोट कर ली है और यकीनन पूरी करने की हम कोशिश करेंगे। रजिया हमें सुन रही है, रजिया थैंक यू सो मच फॉर लिस्टिंग मी, वालेकुम सलाम, आपकी भी फरमाइश नोट कर ली है, पूरी करने की भरपूर कोशिश करेंगे। इसके अलावा कासिम हमें सुन रहे हैं, कासिम बहुत बहुत शुक्रिया सुनने और पसंद करने के लिए, वालेकुम सलाम। मुबीन हमें सुन रहे हैं, मुबीन थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मैन, वालेकुम अस्सलाम। वफा में सुन रही है, वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया और हैप्पी संडे आपने कहा, थैंक यू। इसके अलावा नादिर हमें सुन रहे हैं, नादिर थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मैन, वालेकुम अस्सलाम, फरमाइश आपकी नोट कर ली है। और तानिया हमें सुन रही है, तानिया बहुत बहुत शुक्रिया सुनने और पसंद करने के लिए, फरमाइश आपकी नोट कर ली गई है। तो दोस्तों अपने राइट मैसेज में जाइए, केएचआई लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना मैसेज टाइप कीजिए और 3636 पर रवाना कीजिए। इसके अलावा फेसबुक यूजर मुझे सर्च कर सकते हैं आरजे महफूज के नाम से, मेरी प्रोफाइल पे आएंगे और आकर मुझे बताएंगे कौन सा गाना सुनना है और दिल की बात करेंगे। तो इस तरह से आप 5 बजे तक हमारे साथ रहेंगे और फरमाइश करते रहेंगे एक और बहुत ही खूबसूरत सी सॉफ्ट मेलोडीज आप सबके लिए।

ऑल राइट, आ चुके हैं वापस। आप सुन रहे हैं म्यूजिक मस्ती और मुझे कहते हैं महफूज। बड़ी जबरदस्त सी म्यूजिक आप फरमाइश कर रहे हैं, मैं आपकी फरमाइश पूरी कर रहा हूं, मुझे भी सुनने में बहुत ज्यादा मजा भी आ रहा है। अच्छा जी, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझसे मेरी पर्सनल फेसबुक आईडी पूछी है, तो बहुत ही आसान सा तरीका है, जहां facebook.com लिखते हैं वहां facebook.com के बाद /लगाइए, आरजे महफूज लिखिए, मेरी प्रोफाइल पे आप डायरेक्ट आ सकते हैं, या फिर आप फेसबुक लॉगिन करने के बाद आरजे महफूज सर्च कीजिए, आप मेरी प्रोफाइल पे आ सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो मेरी आईडी है आरजे महफूज, RJMAHFOOZ। इसके साथ साथ अगर आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो बहुत ही आसान सा तरीकाकार है, सर्च कीजिए फन विद महफूज, FUNWITHMAHFOOZ, फन विद महफूज सर्च कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, आपके पास नोटिफिकेशन आएंगी, आप लाइक कीजिए वीडियोस और शेयर कीजिए। अभी के लिए आप अपने राइट मैसेज में जाइए, KHI लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना मैसेज टाइप कीजिए, 3666 करवाना कीजिए। और आप हमें सुन रहे हैं कराची में 100 की फ्रीक्वेंसी पे रेडियो सेट पे। इसके साथ साथ आप हमें पूरे पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाहर सुन रहे हैं वेबसाइट पे fm100pakistan.com पर, या अगर आप एंड्रॉइड यूजर हैं, एप्पल यूजर हैं, तो fm100pakistan एप्लीकेशन डाउनलोड करके आसानी आप हमें सुन सकते हैं। एक बहुत ही खूबसूरत से गाने की फरमाइश आपने की है और मैं बेताब हूं उसे प्ले करने के लिए, सबके लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना।

0: us on facebook.com/FM247365. FM247365.
1: You are listening. Music. Musti.

जी मेरे दोस्तों आ चुके हैं वापस। आप सुन रहे हैं म्यूजिक मस्ती और मुझे कहते हैं महफूज। जब मैं आपको दोस्त कहता हूं तो मुझे बड़ा मजा आता है। आप जरूर बताया करें कि आपको कैसा लगता है कि जब मैं आपको दोस्त कहता हूं। आप अपनी सेहत का बड़ा ख्याल रखा करें। सेहत है तो सब कुछ है और बहुत बड़ा खजाना है, आप यकीन मानिए। सेहत बहुत सारे लोग जो हैं बहुत सारी जगहों पे पैसा लगा देते हैं लेकिन अपनी सेहत पे पैसा नहीं लगाते। सेहत बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनके पास सेहत नहीं है, जो सेहतमंद नहीं है, आप उनसे सेहत की अहमियत पूछिए। अपनी सेहत का ख्याल रखा करें। सेहत को संभालने के भी कुछ बुनियादी सुतून होते हैं, जैसे नींद है। रोजाना 7 से 8 घंटे आपको लाजमी सोना है और कोशिश करें एक ही टाइम पर सोएं और एक ही टाइम पर उठें। इसके अलावा खाना है, घर का खाना खाएं, पानी ज्यादा से ज्यादा पिए, मीठे पे थोड़ा हल्का हाथ रखें और बाहर का खाना कभी खाना हो तो महीने 2 महीने में एक मरतबा खा लिया। इसके अलावा रोज तकरीबन 30 मिनट्स की आपने तेज वॉक करनी है, बीच बीच में थोड़ा खड़ा होना है और उसके बाद थोड़ी स्ट्रेचिंग भी करनी है। तो इस तरह से आप सेहतमंद रहेंगे। और जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो है जहनी सुकून, स्ट्रेस को बांटना। और स्ट्रेस को आप इसी तरह से बांट सकते हैं जब आप अपनों में घुले मिलेंगे। मोबाइल से कभी भी आपका स्ट्रेस खत्म नहीं होगा बल्कि और ज्यादा हो जाएगा। अपनों में बैठें, अपनों में मिलें, लोगों से रابطہ रखें, इंशाल्लाह आपको जहनी सुकून मिलेगा। तो दोस्तों ये सेहत जो है वो एक दिन में नहीं बनती है, रोज के अमल से बनती है। अगर आपने ये तमाम चीजें रोज के हिसाब से करनी है तो इंशाल्लाह आप सेहतमंद रहेंगे। क्योंकि देखिए सेहत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास दुनिया की सारी नेमतें हैं और सेहत नहीं है तो बेकार है। और अगर आपके पास सेहत है तो आप सेहतमंद होने की वजह से मेहनत करेंगे, लगन से काम करेंगे तो वो सारी चीजें आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएंगी। तो सेहत पर कॉन्सेंट्रेट करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। हम आपकी सेहत के लिए दुआ करते हैं और आप हमारी सेहत के लिए दुआ करें। ओके जी, अपने राइट मैसेज में जाइए, KHI लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना मैसेज टाइप कीजिए और 3636 पर रवाना कीजिए। इसके साथ साथ फेसबुक पे भी मैसेज कर सकते हैं आप मुझे। एक और खूबसूरत सा गाना आप सबके लिए सुनिए और वापस आइए।

ओके जी, आ चुके हैं वापस। आप सुन रहे हैं म्यूजिक मस्ती और मुझे कहते हैं महफूज। मुझसे फरमाइश आई है कि अपनी लिखी हुई कोई गजल सुनाएं। बहुत अरसे से आपने कोई गजल नहीं सुनाई, तो चले मैं अपनी ही लिखी हुई गजल आपकी समातों की नजर करता हूं। तेरी नींदें खराब हो जाएं, तेरी नींदें खराब हो जाएं, हम अगर बेनकाब हो जाएं। तेरी नींदें खराब हो जाएं, हम अगर बेनकाब हो जाएं। रात बीते बदल बदल करवट, रात बीते बदल बदल करवट, दिन गुजरने अजाब हो जाएं, दिन गुजरने अजाब हो जाएं, हम अगर बेनकाब हो जाएं। चूम ले एक बार अगर होंठों से, चूम ले एक बार अगर होंठों से, सारे दरिया शराब हो जाएं, सारे दरिया शराब हो जाएं। और खोल दी है किताब माजी की, खोल दी है किताब माजी की, आज सारे हिसाब हो जाएं, आज सारे हिसाब हो जाएं। कुछ तो निकले जुबां से ऐसा, कुछ तो निकले जुबां से ऐसा, सुन के वो लाजवाब हो जाएं, सुन के वो लाजवाब हो जाएं। वो मुस्कुराएं मेरी बातों पे, वो मुस्कुराएं मेरी बातों पे, हंस के खुद बेहिजाब हो जाएं, हंस के खुद बेहिजाब हो जाएं। हसन इस बार बरसते बादल, हसन इस बार बरसते बादल, किसी प्यासे का ख्वाब हो जाएं, किसी प्यासे का ख्वाब हो जाएं। तेरी नींदें खराब हो जाएं, हम अगर बेनकाब हो जाएं।

0: You are listening. Music. Masti.
1: ओके जी, आ चुके हैं वापस। वक्त खत्म हो चुका है। ये वो वक्त है कि हम आपसे अलविदा कहते हैं, हम आपसे खुदा हाफिज कहते हैं और अच्छा सा गाना आपके लिए छोड़ के जाते हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारा ये प्रोग्राम सुना। मैसेजेस करने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया, फेसबुक पे मैसेजेस करने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया और खामोशी से सुनने वालों का तो बहुत ही ज्यादा शुक्रिया कि आप लोग खामोशी से हमें सुन रहे होते हैं, बताते भी नहीं है लेकिन हमें पता चल जाता है। हमारे दिल के तार आपके दिल के तार से जुड़े हुए, हमें मालूम पड़ जाता है कि आप हमें सुन रहे हैं। बहरहाल आप साइलेंट लिसनर्स हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबने फरमाइशें की, आप सबने ढेर सारी बातें की, विशेज हैं और डेडिकेशंस हैं। तो बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम और खास आपका अपना प्रोग्राम कि जिसे म्यूजिक मस्ती कहते हैं, हमेशा आप खूबसूरत बना देते हैं और आज भी आपने इस प्रोग्राम को खूबसूरत बना दिया। तो इजाजत का वक्त है, जहां रहें खुश रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, दूसरों को रखें खुश, बड़ों का करें अदब, छोटों से करें।

प्यार, अपने वतन का, अपने परचम का करें एहतराम, और जब भी दुआ के लिए हाथ उठाएं महफूज करें एफएम 100 पाकिस्तान को, रखें अपनी दुआओं में जरूर जरूर जरूर जरूर याद। अगर आपके वालिदैन हयात हैं उनसे मोहब्बत कीजिए, उनकी खिदमत कीजिए, क्योंकि दुनिया में यही आपकी जन्नत है, ऊपर जन्नत का वसीला। मेहरबानों के बुला लो मुझे चाहो जिस वक्त, मैं गया वक्त नहीं हूं कि फिर आ भी ना सकूं। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट संडे अगले इतवार दोपहर 3 बजे। जाते हुए बहुत ही खूबसूरत सा गाना आपकी समातों की नजर करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड फाइनली अल्लाह हाफिज।

0: स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैया।
1: हुर्मत रसूल का तकाजा है कि तौहीन रिसालत से मुतालिक किसी भी खबर को बिना किसी तस्दीक के ना फैलाएं। ये पैगाम मुफाद आमा के लिए वजारत इत्तिलात नशरियात व कौमी विरसा और FM 100 की जानिब से पेश किया गया।
2: 100 FM।
1: कुरानी आयात और अहदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम हम सब पर फर्ज है। ताज़ीरात पाकिस्तान के सेक्शन 295B के तहत कुरान पाक की तौहीन काबिले सजा जुर्म है, जिस पर उम्र कैद की सजा हो सकती है। इसको गंदगी या रद्दी में ना फेंका जाए। ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 की जानिब से पेश किया गया।
3: HBO फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBO फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBO।
4: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिले भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी, पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशा।
3: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBO फ्रीडम अकाउंट।
5: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन व्हिच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर। एडमिशन्स ओपन। फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111117837।
3: HBO फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBO फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBO।

0: This program is brought to you by Sir Sabz Nitro Force ko laga aur jeet ta ja.
1: And Tabal Family Mixture lai, Umrah par jaye.
2: And HBL Freedom Account, jahan khab, wahan HBL.
3: And Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja.
4: कहीं अनजाने में आप दहशतगर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे, होशियार रहें, मुहतात रहें, अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें। हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है। याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है। हुकूमत पाकिस्तान
5: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
6: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
7: Assalamu alaikum Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: 5:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: HBL Freedom Account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
2: महराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है. शॉबे सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें. डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और शॉबे जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम.
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ. HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
0: This program is brought to you by
3: Sarsabz Nitro Force ko laga aur jeet taaja
0: and
4: Tabal Family Mixture laaye umrah par jaye
1: and HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.

0: It's 5:30 p.m. This time check is brought to you by
1: AGS Tubular Battery hai to dil ko hai aaram.
0: Muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath HBL Freedom Account.
2: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शॉबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
3: सर सर, नाइट्रोफॉस की बोरी पे लगा 9 हिस्सों का स्टिकर कोड अपने नाम और इलाके के साथ 0300-0300-641 पर भेजें या सर सर पाकिस्तान ऐप के जरिए अपनी एंट्री रजिस्टर करवाएं और मौका पाएं उम्र टिकट, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन जैसे ढेरों इनामात जीतने का. एंट्री भेजने के बाद बोरी और स्टिकर संभाल के रखें. मजीद मालूमात के लिए सर सर हेल्पलाइन पर कॉल करें. तो सर सर नाइट्रोफॉस को लगा और जीत ताजा.
0: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट.
4: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग. स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन व्हिच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर. एडमिशंस ओपन. फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111178 37.

0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय सरसब्स नाइट्रो फोर्स को लगा और जीत ताजा
1: एंड
2: पताल फैमिली मिक्सचर लाएं उमराह पर जाएं
1: एंड HBL फ्रीडम अकाउंट जहां खाब वहां HBL

0: ख्वाब तो सब देखते हैं बेहतर रोजगार का, मगर इस ख्वाब की ताबीर के गैर कानूनी जराए खतरनाक रास्तों पे ले जा सकते हैं, जहां मौत यूं खोले आपकी मुंतजर है।
1: हमने अपने आप को से तीन बार मौत देखा।
2: टाइम से मैं ऐसे ही कि मैं हूं कब्र से चला गया, मैं नहीं बचा।
3: फिर उन्होंने साड़ी वीडियो बनाया, सानू मारिया, सब कुटिया।
0: अपने ख्वाबों की तकमील के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार करें।
4: एम्बेसी के थ्रू प्रॉपर वे में सबमिट करवाया और बहुत ही जल्दी मेरा वीजा लग गया था वर्क वीजा।
0: इंसानी स्मगलिंग में मुलविस गिरोहों के सद्भाव के लिए वजीर आजम पाकिस्तान की सरबराही में खुसूसी टास्क फोर्स का कयाम, मुलगीर क्रैकडाउन जारी, एजेंट्स और सरकारी अहलकारान के खिलाफ मुकदमात का इंदराज, गिरफ्तारियां, जायदादों की जब्तगी और बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए जा रहे हैं। अंदरून बैरून मुल्क बेहतर रोजगार के लिए प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम और नेफ्टेक के जदीद तरीन और मुफ्त कोर्सेज में अभी दाखिला लें। मकामात मुकद्दसा की ज़ियारत को जाने वाले ज़ायरीन भी कानूनी ज़रा इख्तियार करें। इंसानी स्मगलरों के चंगुल से बचे, ख्वाब जरूर देखे, बेहतर रास्ता चुने। हुकूमत पाकिस्तान।
5: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
6: बैंकिंग सहूलियात जैसा कि माइक्रो फाइनेंस एप्स, जैज कैश, इजी पैसा और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अमूमन सारिफ के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के साथ मुंसलिक होते हैं, जिसके जरिए ये अकाउंट्स न सिर्फ फाल किए जाते हैं बल्कि किसी तब्दीली की सूरत में तस्दीक के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर कोई सिम आपके नाम से हटा दी जाए या तवील अरसे तक इस्तेमाल न होने की वजह से रिसाइकल होकर दोबारा जारी कर दी जाए तो यही नंबर किसी दूसरे शख्स को दिया जा सकता है, और अगर बरवक्त एहतियाती तदाबीर इख्तियार न की जाए तो नया सारिफ इस नंबर से मुंसलिक आपके सोशल या दिगर डिजिटल अकाउंट्स तक रसाई कर सकता है। ऐसे अकाउंट से की जाने वाली किसी भी गैर कानूनी, गुमराह कुन या तौहीन आमेज सरगर्मी की जिम्मेदारी असल अकाउंट होल्डर पर आयद हो सकती है, जिसके नतीजे में कानूनी पेचीदगियां और शोहरत को नुकसान पहुंचने का खदशा होता है। इसी तरह अगर पुराने नंबर से मुंसलिक बैंकिंग या मालियाती एप्स महफूज न की जाए तो माली धोखाधड़ी और गलत इस्तेमाल का खतरा भी पैदा हो सकता है। अपने ऑनलाइन तहफ्फुज के पेश नजर ये इकदाम जरूर उठाएं। जैसे ही कोई नंबर अपने नाम से हटाएं या तब्दील करें, फौरन अपने तमाम सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स अपडेट कर लें। अपने बैंक, माइक्रो फाइनेंस और पेमेंट ऐप्स में हमेशा अपना मौजूदा और फाल नंबर रखें। अकाउंट्स में मजबूत सिक्योरिटी फीचर्स फाल करें, जैसा कि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन और अकाउंट रिकवरी की सेटिंग्स। डिजिटल तहफ्फुज का आगाज सिम के जिम्मेदाराना इस्तेमाल से ही मुमकिन है। बरवक्त और पेशगी इकदाम आपकी शनाख्त, माली तहफ्फुज और कानूनी हैसियत में मददगार साबित होते हैं। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम, पीटीए।

0: This is facebook.com/FM247365. FM247365. FM100. 31 साल FM100. आपकी आवाज. अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान.
1: अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान. पाकिस्तान.

0: it's 6:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: HBO Freedom Account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBO Freedom Account, jahan khwab वहाँ HBL.
2: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्पन बहुत अहमियत रखता है. शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो. डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी, पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए गोशा.
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ. HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
0: This program is brought to you by
3: Sir Sab Nitro Force ko laga aur jeet taja
0: and
4: Tabal Family Mixture lae umrah par jaye
1: and HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL and

0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय सरसब्स नाइट्रो फोर्स को लगा और जीत ताजा
1: एंड कमाल फैमिली पिक्चर लाइन उमराह पर जाएं
2: एंड HBL फ्रीडम अकाउंट जहां खाब वहां HBL

0: This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khab, wahan HBL. This program was brought to you by
1: Sarsab Nitro Force ko laga aur jeet taja
0: and
2: Tabal Family Mixture laye umrah par jaye
0: and HBL Freedom Account. Jahan khab, wahan HBL.
3: And Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja.
0: HBL Freedom Account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
4: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शॉबी सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉबी सिंगल रेमेडीज, भरोसे देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
0: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट.

0: 7:30 PM. This time check is brought to you by AGS Tubular Battery hai to dil ko hai aaram. This program was brought to you by AGS Tubular Battery hai to dil ko hai aaram. HBL Freedom Account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
1: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस फंड बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए गोशा।
0: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
2: कपाल फैमिली मिक्सचर के साथ हर सफर खास। उमरा लिखे 02111182725 पर व्हाट्सएप करें, पैक के अंदर मौजूद कोड बताएं और लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। कपाल फैमिली मिक्सचर लाएं, उमराह पर जाएं।
0: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।

0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
1: FM 247 365.

0: your location for maximum music.
1: It's 8:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
2: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
1: This public service message is brought to you by FM 100. रात में गाड़ी चलाने के दौरान तेज रोशनी देने का मतलब ऐसा ही है जैसे दिन के वक्त हॉर्न बजाना। इसका गैर जरूरी इस्तेमाल मत कीजिए। ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी कीजिए।

vamos.

0: एक लड़की जब पढ़ेगी तो अपने पैरों पर खड़ी होगी, एक लड़की जब पढ़ेगी तो खुद मुख्तार बनेगी, एक समझदार माँ बनेगी, सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि सारे घराने की जिंदगी बदलेगी, आने वाली नस्लें संवारेगी। एक लड़की जब पढ़ेगी तो मुल्क को मजबूत बनाएगी। पाकिस्तान का आईन और कानून हर लड़की और लड़के को मुफ्त तालीम का हक फराहम करता है। लड़की को पढ़ाएंगे तभी तो आगे जाएंगे। वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।
1: मुफादे आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
2: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदान जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात है और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरूने मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मिट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए, कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: Facebook.com/FM247365

0: Your location for maximum music.
1: It's 9:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
2: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
3: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशतगर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखा दही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल है। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं, तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
4: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
5: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सर दर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहने, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
4: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
6: क्या आप जानते हैं कि आपका मोबाइल बैलेंस गैर इरादी तौर पर भी खत्म हो सकता है? ये अक्सर इस वक्त होता है जब आपका डेटा पैक खत्म हो जाता है लेकिन इंटरनेट पे एज यू गो रेट्स पर चलता रहता है, जिससे बैलेंस तेजी से कम हो सकता है। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से सार्फिन को आगाह किया जाता है कि ऐसे गैर जरूरी चार्जेस से मुहतात रहें। मोबाइल फोन ऑपरेटरों की जानिब से इस मसले के हल के लिए एक मुफीद और मुफ्त सर्विस मुतारिफ कराई गई है। इस सर्विस के जरिए आपका डेटा पैक खत्म होते ही इंटरनेट का इस्तेमाल खुदकार तौर पर बंद हो जाएगा ताकि आपका कीमती बैलेंस महफूज रहे। सर्विस कॉल करने के लिए दर्ज सेल कोड डायल करें। जय सार्फिन के लिए *275#, जोंग सार्फिन के लिए *4004#, यूफोन सार्फिन के लिए *6611# और टेलीनॉर सार्फिन के लिए *342#। अपना बैलेंस महफूज रखें और गैर जरूरी चार्जेस से बचें। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम पीटिए।
7: ये मुफादे आमा का पैगाम अब तक पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है।
6: पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से तमाम मोबाइल फोन सार्फिन को आगाह किया जाता है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि उनके कंप्यूटराइज कौमी शनाख्ती कार्ड फाल होनी चाहिए। याद रखिए, अगर आपके जेर इस्तेमाल सिम के साथ मुंसलिक शनाख्ती कार्ड मंसूख कर दिया गया है या इसकी मियाद खत्म हो गई है या शनाख्ती कार्ड का हामिल फर्द वफात पा गया है तो आपकी मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल की जा सकती है। लिहाजा किसी भी जहमत से बचने के लिए मोबाइल फोन सार्फिन को चाहिए कि जिन शनाख्ती कार्ड की मियाद खत्म हो चुकी है उनकी फौरन तजदीद करवाएं। शनाख्ती कार्ड की मनसूखे से मुतालिक किसी भी मसले के हल के लिए नादरा से रजू करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि सिम किसी वफाशुदा फर्द के शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड ना हो। अगर आपकी सिम किसी वफाशुदा शख्स के शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड है तो कानूनी वारिस मुतलका कंपनी के सर्विस सेंटर मजाज फ्रेंचाइजीज पर जाकर जरूरी दस्तावेजात जमा करवाकर सिम की मुल्कियत अपने नाम करवा सकते हैं। शनाख्ती कार्ड की बरवक्त तजदीद मोबाइल फोन सार्फिन के तसलसल को यकीनी बनाने में मददगार साबित हो सकती है। दीजिए आपकी शनाख्त के तहफ्फुज़ और सार्फिन को महफूज टेलीकॉम सर्विसेज की फराहमी के लिए पुरअज़्म है। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम पीटीए।

0: FM 100's time check. It's 10 p.m.
1: FM 100. Like us on Facebook.com/FM247365.
2: FM 247365.
3: FM 100.
0: 31 साल FM 100 आपकी आवाज. अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान.
3: अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान. पाकिस्तान.

آبادی 18 سے 35 سال کی عمر کے افراد پر

0: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदाने जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात है, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो रास निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
2: facebook.com/fm247365 fm247365

No bunny, no pareshani. FM 100. Like us on Facebook.com/FM247365. FM 247365.

جب تیری شان کریمی دینا

0: ಕಾಲ್ ಹೌದು
1: ಮಾನ್ ಕೇ ಕುಲ್ ಖುದಾ ರಹಮತ್ ಕುಲ್ ನಬೀ

Oh,

حسن میں نفسی نفسی کرے گا جہاں.

0: طرف ہے طلب،
1: ایک طرف جستجو، ایک طرف
2: ہے کوشش،
1: ایک طرف
2: آرزو،
1: ایک طرف
2: ہم